एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:58 व 42 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक

0: साथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

संत कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमने दुनिया के सारे झंझट तो पाल लिए हैं या पाल लेते हैं, क्रोध को अपना लेते हैं, झूठ का दामन भी थाम लेते हैं, लेकिन उस परम पिता का नाम जपना छोड़ देते हैं जिसने हमें ये खूबसूरत जीवन दिया है, जिसके नाम मात्र से ही मन के सारे मैल धुल जाते हैं।

0: कहते हैं जब इंसान दुनिया में आता है तो मन की चादर एकदम कोरी और उजली लेकर आता है, पर दुनिया में मोह माया के बंधनों में इस कदर फंसता चला जाता है कि उसकी इस चादर पर दाग लग जाते हैं। और कवि और संत हमेशा यही चेतावनी देते हैं कि जब उस परम पिता के दरबार में हाजिरी होगी तब तन की नहीं मन की चादर देखी जाएगी।
1: मेरी चादर ओढ़ के

अनूप जलोटा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर सुरेश वाडेकर और रविंदर साठे का है। संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

सुग्रीव को बालीवध के अपने निश्चय का आश्वासन देते हुए श्री राम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए। जेन मित्र दुख हुई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से विमुख कर अच्छे मार्ग पर ले जाए, अपनी सामर्थ्य भर सदैव मित्र के हित के लिए कार्य करे और विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। जो सामने तो ठुकुर सुहाती करता है, कोमल प्रिय वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। श्री राम के श्रीमुख से मित्र और कुमित्र के लक्षण सुनकर सुग्रीव के मन में वैराग्य का संचार हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आजीवन श्रीराम का सेवक होकर रहने की कामना प्रकट की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक स्वर सुरेश वाडेकर और रविंदर साठे के थे, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज विक्रमी संवत 2083 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और अब बारी है अपडेट्स की।

ऑपरेशन एमिस्टेड के अंतर्गत भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना के 2 विमान राहत और चिकित्सा सामग्री लेकर रवाना हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे सेशेल्स में।

उत्तर और मध्यम भारत में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता के कारण मौसम सुहावना बनने की उम्मीद है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आइए अब आपको जानकारी दे दें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रसारित होने वाले आज बाकी के कार्यक्रमों की। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, ये कार्यक्रम शाम 5:10 पर दिल्ली से रिले किया जाएगा। आज आप इसकी 7वीं कड़ी सुनेंगे। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा ऐसा देश है मेरा। आज की कड़ी में हम आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़। स्वर अनुराधा का, निर्देशन विनिश्री का, तकनीकी सहयोग राजेंद्र कुमार का और प्रस्तुति महेंद्र मोहन शर्मा की रहेगी। युवा साथी अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:30 पर। किसानवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30 और ग्राम संसार सुनिएगा शाम 7:00। गीता संदेश में आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्लोक 6 और 7 की व्याख्या। व्याख्या करेंगी डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी और समय रहेगा शाम 6:20। सुनिएगा बाजे नगाड़ा प्रातः 7:40 पर।

गुलदस्ता कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:45। इसके तहत आप गैर फिल्मी नगमे, गीत, गजलें और कव्वालियाँ सुनते हैं।

हिंदी में समाचार होंगे प्रातः 7 बजे, 8 बजे, दिन में 2:15 पर, शाम 6 बजे, रात्रि 8:45 पर और रात्रि 11 बजे।

0: हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे, ऐसा देश है मेरा कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा रात्रि 8:15 पर। आज की कड़ी में हम आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़। स्वर अनुराधा का रहेगा, निर्देशन विनिश्री का, तकनीकी सहयोग राजेंद्र कुमार का और प्रस्तुति महेंद्र मोहन शर्मा की होगी। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र यानी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आज प्रसारित होने वाले बाकी के कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्, प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथि रूपेण उपस्थितः भविष्यति। पञ्चदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् अनन्तरम् इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं, भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटक यान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः, विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः, भारत टैक्सी संबद्धाः 4,000+ सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमित शाहः गतवासरे मादक द्रव्याणि विरुध्य संयुक्त संघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्री शाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
2: मादक पदार्थों की समस्या

0: केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: उत्तर प्रदेशारक्षिबलिना श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टो जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वीयोत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखंडेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर

ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी। गीतकार अनजान और संगीतकार ओपी नैयर थे।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म शंकर हुसैन में। गीतकार जानिसार अख्तर थे और संगीत दिया था खयाम ने।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म पतंग में। गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे और संगीत दिया था चित्रगुप्त ने।

0: कैसे
1: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म प्रोफेसर में। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म घर में। गीतकार गुलजार थे और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। और इस सदाबहार गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल पुकारे संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार हैं सरदारा सिंह।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: बाजे नगाड़ा में हमारे आज के कलाकार हैं सरदारा सिंह।

इसके साथ ही वाजिया नगाड़ा कार्यक्रम संपन्न होता है। हमारे आज के कलाकार थे सरदारा सिंह। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ

0: करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के

0: विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी कर

कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों, आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे कि खुशी क्या है और खुश क्यों होना चाहिए। खुश तो भाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपकी जो खुशी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस ज़िंदगी में हर इंसान को हर पल खुश रहना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। अब आप ये सोचें कि दुख आए नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं। अगर सुख है तो दुख है, और अगर दुख है तभी आप सुख का इतना मजा ले पाते हैं। वरना उदास होने के लिए तो बहुत से कारण हैं। चाय में चीनी कम हो जाए तो भी मन उदास हो जाए, न्यूज़पेपर में अगर खबरें पढ़ते हैं तो भी मन उदास हो जाता है। तो फिर इतनी खुशी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि एक चम्मच चीनी तय करे। उसे तय करने का हक नहीं है कि हम उदास हैं या खुश हैं। अब थोड़ा सा मुस्कुराना है और थोड़ा सा हंसना है, और कार्यक्रम सुनना है सुबह सवेरे शशि बाला के साथ।

तो हो गई ना अच्छे से दिन की शुरुआत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ। बिना मतलब से भी खुश रहना एक अपना अलग ही हुनर होता है, तो हर पल खुश रहिए, क्योंकि जो बीत गया कल है वो बीत चुका है और आने वाला कल तो किसी ने देखा नहीं है। तो हमें जीना कब है? जीना इसी पल में है जो चल रहा है। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? भाई आसान सा प्रश्न हमने आपसे पूछा है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? आपको अपना उत्तर टेक्स्ट मैसेज के जरिए 9466021336 पर देना है, 9496601336 पर आपने अपना उत्तर टेक्स्ट मैसेज के जरिए लिखकर भेजना है। तो दीजिए आसान से प्रश्न का उत्तर, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था?

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। नाम थोड़ा भारी भरकम सा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। हमारे अपने लोकल बिजनेस, अपने छोटे व्यापारी जो अपनी छोटी सी दुकान या एक कमरे से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक पहिया लगा देते हैं, आज का दिन इन्हीं के जज्बे को सलाम करने का है। जरा सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा आइडिया जब मेहनत के पसीने से सींचा जाता है तो एक बहुत बड़ा रोजगार बन जाता है। ये जो हमारे छोटे उद्यमी हैं ना, ये सिर्फ सामान नहीं बेचते, ये अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं और चार लोगों को और काम देकर उनके घर का चूल्हा भी जलाते हैं।

कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई कमाल के अचार और पापड़ भी तैयार कर रहा है, तो कोई नई तकनीक से देश को आगे बढ़ा रहा है। सच कहें तो भाई, बड़े बड़े मॉल और ब्रांड्स एक तरफ हैं और हमारे इन लोकल भाइयों और बहनों का भरोसा एक तरफ। आज का दिन है इनके काम की कद्र करने का और शान से कहने का, हाँ हम वोकल फॉर लोकल हैं।

बस इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे, हौसले बुलंद रखिए, क्योंकि आपकी छोटी सी शुरुआत एक दिन बहुत बड़ा मुकाम लिख सकती है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
4: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
3: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
5: दोस्तों, आज 27 जून है। आज ही के दिन 1839 में एक ऐसी महान आत्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया जिसके नाम मात्र से दुश्मन कांप उठते थे। हम बात कर रहे हैं शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की।

बचपन में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह जी की एक आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन सकारात्मक रुख तो देखिए, वो बड़े फख्र के साथ कहा करते थे कि ईश्वर ने मुझे एक ही आंख दी है ताकि मैं अपने राज में हर धर्म हर जाति के इंसान को एक ही नज़र से देख सकूं, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया।

आज ऐसे महान शासक की पुण्यतिथि है और उनसे हमें सीखने को मिलता है कि ताकत सिर्फ तलवार में ही नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले हौसले और न्याय में है। सच्चा राजा वही है जिसके राज्य में प्रजा खुद को सुरक्षित महसूस करे।

श्रोताओ, कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है, तो भी इसका श्रेय दो प्रमुख आविष्कारकों को जाता है। 1827 में रोमानियाई रोमन के जो एक आविष्कारक थे पेट्रोचे पोएनारू, उन्होंने इसे पहली बार पेटेंट करवाया था। और वहीं अगर हम लुइस एडिसन वाटरमैन की बात करें तो उन्होंने आधुनिक

और रिसाव मुक्त फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी उत्तर दिया है, दोनों का ही उत्तर ठीक है। और उस सही उत्तर देने वाले जो हमारे श्रोता हैं, आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी और श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, रामधारी अवाना, अनाया ओजस अवाना, गांव ढाणी, कुतुबपुर, जिला हांसी से, राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, दरियापुर महाराष्ट्र से गजानन जेले, अगला सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं लालपुर मारू छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार संतोषी और निशांत ध्रुव, सुधा नारायण के हाली बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हैं, सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से कविता चावला, भारत भूषण और इशिता परूथी, बिहार से डब्ल्यू वली बेलदार, उल्लाह वली और सोनम वली बेलदार, रायपुर से नीलू बेंक नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, ललिता सिंह, भगवान सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने भी सही उत्तर लिखकर भेजा है। गांव जीवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र शमशेर और मनोज भ्याण, बीपी गौतम सरिता गौतम एटा रोड गंज डुंडुवारा से, फनीश कुमार चंदन सावित्री देवी हेयांश कुमार चंदन सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से, टिया और कृष्णा सोलन हिमाचल प्रदेश से, गांव भाणा ब्राह्मण वाला नरवाना से मेघराज शर्मा, विनोद तोमर संजू देवी ममता देवी, ग्राम पंचायत नेहर सवर जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश से, सांतड़ी से मदन काम्बोज, समृद्धि काम्बोज, सुनील कमल गव्या मल्होत्रा अनारकली बाजार जगराव से, डीर पाटन गुजरात से धीरज वीरवारी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, सुरेश खुराना किरण खुराना लव्या आरव खुराना एसके पप्पी एमएलबी रोड ग्वालियर से, संजीव स्वामी सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से, जयश्री सुनील बेंगलोर से, नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव अनीता और सोनल प्रसाद जाधव, मोहम्मद जाहिद अली सैफी जोहान लीबा मल्लिक और आवाद खान चप्पर वाली मस्जिद कासगंज से, राजेश कुमार मेहरा खुर्द झालावाड़ राजस्थान से, अमरावती से महेश रामटेके ज्ञानेश्वर और निर्मला रामटेके, नजफगढ़ नई दिल्ली से सुमन गौरव शर्मा और इनके साथ हैं सौरभ शर्मा, गांव जाखूत से शंभू दयाल खटक विमला योगेश और दीपक के साथ पूजा, रवि कुमार राहुल रणजीत कौर गुरशबद सिंह राहुल योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाला से, गांव कौल जिला कैथल से अशोक कुमार भारद्वाज संतोष भारद्वाज अभिनव भारद्वाज और पल्लवी भारद्वाज, तेजपाल सिंह अनुराधा क्षमा शिवी मधुबाला प्रजापति चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा, संजीव कुमार अमन गांव खुकनी तहसील इंद्री करनाल से, गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज वंश और भुवेश कुमार काम्बोज, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, तिलक राज अरोड़ा प्रकाश और चंदन अरोड़ा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, गंज टुंडुवारा उत्तर प्रदेश से भुवन प्रकाश गौतम श्री गौतम, गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बागड़िया क्रियांश और बेबी गरिमा बागड़िया, बलदेव सैनी विजय सैनी और भारत प्रतापगढ़ कुरुक्षेत्र से, रायसन करनाल से रजनीश पत्रा और कबीर के साथ हैं दृष्टि, भोपालगढ़ राजस्थान

पाकिस्तान से धर्मेंद्र कपिल और पूजा परिहार। बन बघेरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा। सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन के साथ अपूर्वा और कुसुम। कनेर मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और बत्ता परिवार के सभी सदस्य। कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू, कदुआपड़ा, जगत सिंहपुर ओडिशा से। कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा उत्तर प्रदेश से। नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और छाबड़ा परिवार के सभी सदस्य। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल, सुषमा सुरोशे और मायरा सुरोशे। कासगंज उत्तर प्रदेश से अनुपमा कुसुम और अपूर्वा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन जेले, नवदीप जेले और इनके साथ हैं विश्वदीप जेले, रवि और इंदर रानीगंज बंगाल से। जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर से मोहम्मद फरमान, नरगिस खातून। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन और कृष्णा जैन। यवतलाल महाराष्ट्र से वृंदा, पूजा और पोपोराम टेके। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण, जगदीश और हिरेन भाई। बोरसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और बीमा साहू। मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार, योगेश और राहुल साहू। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी और गौरव सैनी। मोहम्मद सईद अब्बासी, निघट प्रवीण, शाहनवाज, फरनवाज अब्बासी, अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। ऊपरकोट बुलंदशहर से गरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी चौहान और बेबी हिमाल प्रीत चौहान और बेबी गर्वी। छत्तीस पोरसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू। संतोष नामदेव, संजना नामदेव, अनन्या नामदेव, सोरई ललितपुर उत्तर प्रदेश से। डूंजी लोहारा से प्रभा जाटव, राधिका। शनि चौक खंडवा से अनीता कुमारी और दुर्गा कुमारी। कल्याण मुंबई से किशोर, सुजाता और प्रतीक हिवराले। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम और निमित देशानी। ढाणी कुतुपुर से सोनिया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और मीठी। हिंगड़ी आलोट रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। वीरम गांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार और प्रमिला भावसार। भीम खोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता और देवकी गुप्ता। गंज डुंडुवारा से शमसुल कमर राही, कलीम और उस्मान अंसारी। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्र कला रेवाड़। डूंडी लोहारा से राधिका बेलदार और प्रभा बेलदार। वीरम गांव से अर्चना खुशी, कुशल और कौशल जोशी। जेल रोड दिल्ली से गुड़िया वसीम अंसारी और खंडवा से गौरव जटुलिया। बिहार स्टेट डुमराव से राधिका, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गोरैया जलंधर से अशोक जाटव। अगला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है डूंडी लोहारा से तुषार आरती डोमीन और खंडवा से निशा जाटव। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस और निखिल वर्मा। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। झिगुड़ी से रणधीर सिंह बांगड़, युगम और नागल से इंदर राज। इन सभी ने हमें सही जवाब लिखकर भेजा, इसके लिए हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजते रहिए और हमारे प्रश्न का सही उत्तर भी लिखकर भेजते रहिए।

दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे जिक्र किया था कि आपने हर पल खुश रहना है और उदासी को बिल्कुल भी पास नहीं फटकने देना है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी बात को। ये जो उदासी होती है ना, ये हर किसी के घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है। आप इसे कितना भी इग्नोर करो, ये सोफे पर आकर बैठ जाती है। तो भाई, इसका इलाज क्या है? इसे आपने चाय नहीं पिलानी है। जब उदासी कहे कि आज मन खराब है, तो आप पलट कर कहो कि ठीक है भाई, तुम अपना मन खराब रखो, हम तो चले अपनी पसंद का खाना बनाने और खाने। खुश रहने के लिए ना कोई मुहूर्त नहीं निकलवाना पड़ता। किसी पुराने दोस्त को फोन लगाओ, उसकी पुरानी पोल खोल दो, फिर देखो कैसे ठहाके निकल पड़ते हैं। उदासी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी जिंदा दिली के आगे टिक सके।

श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं कि गर्मियों के मौसम में अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें। तो गर्मियों के मौसम में तेज धूप, धूल मिट्टी, गर्म हवाओं का सबसे सीधा असर, जो सबसे पहला असर पड़ता है वो आंखों पर ही पड़ता है। इस मौसम में आंखों में सूखापन, जिसे ड्राई आइज कहते हैं, जलन, लालिमा, इन्फेक्शन, इन चीज़ों का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। गर्मियों में अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आप धूप का चश्मा लगा सकते हैं। जब भी बाहर निकलें तो धूप का चश्मा लगाकर निकलें। ये फैशन के लिए नहीं है, बल्कि आंखों की सुरक्षा के लिए है। आंखों को बार बार आप ठंडे पानी से धो सकते हैं। इससे आंखों में जमी धूल मिट्टी साफ हो जाती है और गर्मी से तुरंत राहत मिल जाती है। आंखों को कभी भी गंदे हाथों से मत रगड़िए। गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होने से आंखों में जो पानी है वो बनना कम हो जाता है, जिसे ड्राई आईज की समस्या इससे हो जाती है। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी लीजिए, ताकि आंखों में भी नमी बरकरार रहे। पूरे शरीर में भी नमी बरकरार रहती है इन चीज़ों से, लेकिन आंखों की नमी भी बरकरार रहती है। सबसे ज़रूरी बात, भाई स्क्रीन टाइम कम कीजिए। गर्मी और एसी की सूखी हवा के बीच लगातार मोबाइल या लैपटॉप देखने से आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए। तो लेना ही है, और साथ ही साथ 20 फीट की दूरी भी रखिए जब आप किसी चीज़ को देखें। इससे आंखों की मांसपेशियां जो हैं उन्हें आराम मिलता है। आप खीरे या गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आंखों की जलन, आंखों की थकावट दूर करने के लिए। खीरे के पतले टुकड़े काटकर 10 से 15 मिनट तक आंखों पर रखिए और आंखों में इनसे बहुत ठंडक मिलती है। सीधे सीधे एसी या पंखे की हवा के सामने बिल्कुल मत बैठिए। सीधी वो आपके चेहरे पर या आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए। ये हवा आंखों की नेचुरल जो नमी है, जो प्राकृतिक नमी है, उसे सुखा देती है। अपनी डाइट में विटामिन ए को किसी भी रूप में शामिल कीजिए, चाहे गाजर, आम, पपीता, तरबूज जैसे मौसमी फल खाइए, और अगर फिर भी कमी होती है तो डॉक्टर को दिखा के विटामिन ए के कैप्सूल्स भी लिए जा सकते हैं। और यदि लगातार आंखों में लाली है तो आप अपना इलाज करने की बजाय एक नेत्र विशेषज्ञ के पास जाइए और उसे ज़रूर दिखाइए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरांजलि।

कार्यक्रम स्वरांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
3: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
4: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
5: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
4: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
5: तो देर किस बात की, अब

0: अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
1: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज, अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वरांजलि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से।

इसके साथ ही स्वरांजलि कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।

1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर.डी. बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे। तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू। और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी, जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई। हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
0: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी

0: उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
1: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरे नमस्ते। दोस्तों नमस्ते कुरुक्षेत्र हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसके तहत आप हमें फोन मिलाते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, सुनते हैं अपनी ही पसंद का कोई गीत। तो आज भी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जल्दी से हमें फोन मिलाइए और सुनिए अपनी ही पसंद का कोई गीत, साथ ही साथ कीजिए हमसे बातचीत, अपने बारे में कुछ बताइए और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ जान लीजिए। जब तक आप हमें फोन मिलाते हैं तब तक सुनिएगा हमारी पसंद का ये गीत। फोन नंबर आपका जाना पहचाना है 221-322।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
0: हाँ जी मैडम जी, बड़े मान ते सत्कार नाल आप जी नु प्यार भरी नमस्कार है और प्यार भरी सत श्री अकाल।
1: आपको भी।
0: समाणा मंडी तो लाडी सिंह धालीवाल बोलदा, जिला पटियाले तो। मैडम जी,
1: लाडी सिंह जी स्वागत है आपका। आज कौन सा गीत सुनवाओगे?
0: गीत सुनाएंगे मैडम जी अपने श्रोतिया नु कोयला फिल्म से।
1: जी कोयला फिल्म से, ठीक है, गीत तो सुनवाते हैं। ये बताइए, पंजाब में पटियाला में मौसम कैसा है? मॉनसून आया कि नहीं आया अभी?
0: नहीं मैडम, अभी नहीं आया, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: यहाँ भी बहुत गर्मी है। चलिए कोई बात नहीं, गर्मी के बाद थोड़ा सा सुहावना मौसम भी जरूर आएगा। इंतजार करते हैं सुहावने मौसम की।
0: मैडम जी हमारे दोस्त हैं रणधीर सिंह बांगड़ जी, तो ताई जी है हमारी गरमेजो कौर, तेजा मोड़ी तो बंसी लाल जी,
1: जी
0: सुरिंदर सिंह लाडी सुलर तो
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी कॉल अटेंड की।
1: आपका भी धन्यवाद फोन लगाने के लिए। आप तक
0: खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, बाद रहो। थैंक यू सो मच।
1: आप तक कोयला फिल्म का ये गीत पहुंचाते हैं।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।

0: हेलो।
1: खूबसूरत होते हैं वो पल जो पलकों में सपने होते हैं, चाहे जितने भी दूर रहें पर अपने तो अपने होते हैं। गुड मॉर्निंग बहन जी।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
1: हम ठीक हैं बहन जी, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोलिया, तहसील नवाबगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं बहन जी।
0: और गाना कौन सा सुनोगे?
1: आज जी गाने के बोल रहेंगे, गोरी हैं कलैया, आज का अर्जुन मूवी का है सॉन्ग, यही सुनवा दीजिएगा मैम जी। और मौसम कैसे है?
0: मौसम यहाँ का तो ठीक है, गर्मी है तो गर्मी है ही। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में बरेली में कैसा मौसम है?
1: मैम जी अभी तो गर्मी है, हमने सुना कि आपके इधर तो बारिश हो रही है।
0: यहाँ कुरुक्षेत्र में तो अभी बारिश नहीं है। हाँ, मौसम का पूर्वानुमान अगर देखा जाए उसके अनुसार आने वाले एक दो दिन में बारिश बता रहे हैं वो। देखें, इंतजार करते हैं कब आती है बारिश।
1: हाँ जी मैम जी, कुछ दोस्त हैं हमारे, दोस्तों के नाम शामिल कर सकते हैं?
0: जी, बिल्कुल लीजिए अपने दोस्तों के नाम।
1: हाँ जी, सबसे पहले तो आप रहेंगी, और तारुण नूर अंसारी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, लोकेंद्र जी हैं, और राजू यादव जी हैं, और गंगाधर सावंतर जी हैं, सोनू जी हैं, और जितने भी लाइव श्रोता सुन रहे हैं सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा। और आरजे पूनम जी कानपुर से रहेंगी बहन जी।
0: जी, आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ठीक है मैम जी, नमस्कार।

0: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है, लेकिन भाई अपने पैरों के नीचे यानी उस नीले समंदर के अंदर भी झांकने की कोशिश कर लीजिए, वहाँ भी एक दुनिया है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, शांत है लेकिन अजूबों से भरी है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पानी की रानी यानी मछलियों की अनोखी और जादुई दुनिया के बारे में। तो साथियों, बचपन में हमने सुना था मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ मछलियां ऐसी भी हैं जिन्हें सिर्फ पानी में तैरना ही पसंद नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग फिश की। जब भी कोई शिकारी इनके पीछे पड़ता है तो ये पानी की सतह को छोड़कर हवा में आ जाती है और करीब 200 मीटर तक उड़ सकती हैं, है ना कमाल। और जनाब, उड़ने वाली ही क्यों, मड स्कीपर एक मछली है जो पानी के बाहर जमीन पर बाकायदा अपने पंखों के सहारे चलती है, कूदती है और पेड़ों की जड़ों पर भी चढ़ जाती है। मतलब पानी की रानी जमीन पर भी राज करने निकल आती है कभी कभी। और दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, जहां एकदम अंधेरा होता है वहां पाई जाती है एंगलर फिश। इसके सिर पर कुदरती तौर पर एक बल्ब यानी रोशनी देने वाला एक अंग होता है, यानी कि अंधेरे समंदर में ये अपनी ही टॉर्च जलाकर घूमती है। तो इसी तरह से ये सब सुनने में बहुत जादुई सा लगता है, लेकिन इस खूबसूरत दुनिया पर आज एक संकट भी मंडरा रहा है। हमारे फैलाए प्लास्टिक और प्रदूषण की वजह से इन बेजुबान और रंग बिरंगी मछलियों का घर उजड़ रहा है, समंदर का तापमान बढ़ रहा है और कई दुर्लभ प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए लुप्त होती जा रही हैं। सोच कर देखिए, धरती से, समंदर से अगर ये रंग ही गायब हो गए तो धरती कितनी बेरंग हो जाएगी। मछलियां सिर्फ पानी की ही शोभा नहीं, ये हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी हैं। तो दोस्तों, जब भी अगली बार पानी की किसी बूंद को देखें या समंदर के किनारे जाएं, तो याद रखिएगा उसके नीचे पूरी जादुई कायनात सांस ले रही है, उसे बचाना आपका और हमारा फर्ज है। अब देखते हैं कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं। भाई,

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? सोहन लाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नीलोखेड़ी से। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: निकाह
0: का गीत आप तक पहुँचाते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए सोहन लाल जी, क्या करते हैं? अच्छा, तो घर परिवार में कौन है?
1: दो लड़कियां
0: पढ़ती हैं दोनों,
1: और प्लस टू कर
0: जी
1: और
0: जी जी बहुत बढ़िया। आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रही हैं?
1: संगम बोल रहा हूँ, पीपली
0: संगम, कहाँ से?
1: से। हाँ
0: संगम, पहले आपने फोन किया है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में? पहले भी कभी किया है आपने? किया था पहले
1: किया नहीं
0: भी?
1: था, पर
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। क्या करती हैं आप, बताइए? संगम, क्या करती हैं आप?
1: स्कूल में जाते हैं।
0: स्कूल में? कौन सी कक्षा में?
1: 8वीं।
0: 8वीं कक्षा में जाती हैं? तो आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की,
1: जी मैम,
0: तो घर में क्या करते हैं? खेलते ही हैं? गीत संगीत तो आपका, आपकी रुचि है ही, तभी आपने हमें फोन मिलाया है। और इसके अलावा क्या करते हैं?
1: खेलते हैं। गा
0: जी, तो आपका तो अभी बचपन का दौर चल रहा है, तो खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है बचपन में, और तभी तो इंसान जो है वो आगे बढ़ता है। कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जल्दी से बताइए गीत कौन सा सुनेंगी, कौन सा गाना सुनवाएं संगम आपको?
1: माता का सुना दो। यस
0: जी, माता का कौन सा, कोई भी?
1: मैम।
0: आप तक पहुंचाते हैं माता रानी की ये भेंट।

0: दोस्तों अब थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी कि 44 के बारे में। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 4112 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसे पहले पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के रूप में जाना जाता था यानी कि NH7। ये उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। इसकी कुल लंबाई तो हमने आपको बता दी है। कश्मीर घाटी से शुरू होकर कई प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई से होते हुए कन्याकुमारी तक ये रास्ता जाता है। कुल 11 राज्यों में से ये गुजरता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो भाई इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत इसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का मुख्य भाग भी माना जाता है। और अब देखते हैं कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम मैं हिमाचल प्रदेश के सरकार घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी।
0: कैसे हैं नागेंद्र जी?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया मौसम है।
0: आपके हिमाचल में मौसम कैसा है?
1: बहुत जबरदस्त जी।
0: जबरदस्त,
1: स्विट्जरलैंड बना हुआ है पूरा हिमाचल जी।
0: अरे क्या बात है, बताओ, आपसे बात करके ठंडी ठंडी हवा आ रही है हमें, वरना तो हम यहाँ गर्मी में तप रहे हैं हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में।
1: तो मैडम जी पंजाब, हरियाणा का, दिल्ली का तो एयर कंडीशन हिमाचल में ही है जो हमारे ग्लेशियर हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस एयर कंडीशन की हवा इधर कब मोड़ेंगे हमारे?
1: मैडम जी एक दो बारिशें होने दो, फिर उसके बाद बस ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा आपका दिन।
0: जी जी जी। और नागेंद्र जी मौसम का हालचाल तो बता दिया, अब थोड़ा सा हमने मछलियों की दुनिया की चर्चा की थी, हमने समुद्र में कचरा डालने के लिए सबको मना किया है, अपने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से संदेश दिया है कि कभी कभी हमें बातें पता तो होती हैं लेकिन हम उनका अनुसरण नहीं करते हैं। तो भाई समुद्र में कचरा ना डालें क्योंकि इससे समुद्र में रहने वाले जीवों को खतरा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथी भाइयों को?
1: मैडम जी ये जो प्रदूषण है इसने पूरी दुनिया को धुआं देके रखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही।
1: ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय ध्रुवीय हिमखंड जो है हमारे वो पिघल रहे हैं और समुद्र तटों पे बसने जो बसने वाले लोग हैं वो भी डूब रहे हैं जी। वहां तक ये जो कूड़ा कचरा हमारी नदियों से जैसे यहाँ पर ब्यास, सतलुज, रावी, यमुना, गंगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से निकलती हैं तो ये सब समुद्रों में जाती है जी।
0: जी।
1: तो इनसे जो कचरा वहाँ पर पहुँचता है तो मेरी एक गुजारिश है हिमाचल के लोगों से भी और यहाँ पर आने वाले बहुत सारे टूरिस्टों से भी कि इस कूड़े कचरे को जो है वो कृपया करके यूं ना फेंके इधर उधर और जंगलों को भी आग से बचाएं। ये जो सिगरेट और जो रेप पार्टियां आप जंगलों में मनाते हैं वहां पर घूमने

0: जाते हैं तो वहाँ पर चीड़ की पत्तियों को और देवदार की पत्तियों को झट से आग लग जाती है जी।
1: बिल्कुल सही।
0: तो इनसे भी अपनी सुरक्षा भी रखें और जंगलों की सुरक्षा बहुत ज्यादा लाजमी है मैडम जी, क्योंकि वक्त कम बचा है, एकजुट होकर के हमें संकल्प लेना पड़ेगा अगली पीढ़ियों को शुद्ध जलवायु दे करके स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य का उपहार दे सके जी।
1: और ये तभी हो सकता है जब हर इंसान इस बारे में सोचे, एक एक बसने वाला इंसान इसी बारे में बात करे और इसी बारे में सोचे।
0: जी जी। और ये जो सपनों से सुंदर स्वर्ग सा हिमाचल है, ये यहाँ पर प्रकृति का दोहन और वनों का जो सुरक्षा है और जो प्राणी जगत हिमाचल का जो जीवन चक्र है, जो जैव विविधता है, उसको भी सुरक्षित रखा जाए और इस हिमाचल का अनछू और अनजाना जो हिमाचल है वहां तक इसको सुरक्षित रखना पड़ेगा
1: जी। अब गीत बताइए जल्दी से।
0: मैडम जी, हिमाचल का ही एक परिदृश्य है उसमें, ये कौन चित्रकार है?
1: अरे वाह,
0: हिमाचल में शूटिंग हुई है, बूंद जो बन गई मूर्ति फिल्म है जी।
1: जी,
0: बहुत बढ़िया गाना है जी।
1: जी सच में वाकई, और जिस विषय पर हमने बातचीत की उसी से संबंधित आपने गीत की फरमाइश भी की। आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कुरुक्षेत्र।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, तेजपाल सिंह प्रजापति बोल रहा हूँ, चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से।
0: तेजपाल सिंह जी, कैसे हैं?
1: बस बहुत अच्छे हैं, नाम आप सुनाइए।
0: हम भी ठीक हैं। आपने तो बहुत अरसे बाद फोन मिलाया।
1: जी मैम, लाइन ही बिजी रहती है काफी।
0: हाँ, लाइन तो बिजी रहती है, नए नए श्रोता भी उनसे जुड़ रहे हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगता है मैम, नए नए श्रोता आ रहे हैं ना जी।
0: हाँ जी,
1: बहुत अच्छी महसूस होता है जी।
0: जी, गाना कौन सा सुनोगे?
1: जी मैंने गंगा जमुना सरस्वती लम्बा है जी, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकार है।
0: आप तक पहुँचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है मैम, थैंक यू जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आज है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन का जन्मदिन और इसी मौके पर उनके ही संगीतबद्ध किए गीत और कुछ गीत

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। शोले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला।

0: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में पुकार फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना गुलशन बावरा की, संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं राहुल देव बर्मन के संगीत से सजाइए गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन ने। रॉकी फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रॉकी फिल्म के गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत ना होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था

0: सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक टिक टिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी, परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला।
1: जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को

0: गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख कर के लता दीदी स्वयं वहाँ आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया, सावरे छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया,
0: बात एक रात की।

सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं। सुन

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं। और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई चोट
1: फिल्म सूरज।
2: इतना

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण

0: समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन को।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजें गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे

0: मीटिंग पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: भरे दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के बोल अंगूर फिल्म के गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनिएगा। इस कार्यक्रम का ये पुनः प्रसारण है 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं, और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

पागले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अगर तुम ना होते फिल्म से ये गीत। गुलशन बावरा ने इसे लिखा राहुल देव बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोजाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे। वो तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें। आज की इबारत है, यार दोस्त संगी साथी कितने छूटे कितने बाकी, पहिया जीवन का चलता जाता पीछे छूटा सारा नाता, चले मुसाफिर अपने रास्ते कभी झूमते कभी तरसते, यही जीवन की रीत है भैया कभी धूप तो कभी उछैया, दुनिया की ये गोल कहानी हमें सुनाती दादी नानी। तो इस इबारत में जो शब्द छुपे हैं उनसे आपको पता करना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। हालांकि आपने बहुत सी बात तो इबारत के बारे में भी लिख भेजी है और बताया भी है कि क्या वाकई जीवन इस तरह का होता है जहां हमारे पीछे बहुत सी चीजें छूटती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी एक साथी कहती हैं कि ये पंक्तियां जीवन के उस निष्ठुर लेकिन खूबसूरत सच को उजागर करती हैं जहां समय एक निपुण कथावाचक की तरह हमारे रिश्तों की किताब के पन्ने पलटता रहता है। हम सभी इस अनंत यात्रा के ऐसे मुसाफिर हैं जिनके सूटकेस में पुरानी यादों के खनक और यादों में नए रास्तों की उम्मीदें होती हैं। सफर में लोगों का छूटना और नए चेहरों का जुड़ना इस गोल दुनिया का चक्र है जो हमें सिखाता है कि धूप की तपिश के बिना छांव के सुकून की कोई कीमत नहीं होती। दादी नानी की कहानियों से उपजा ये दर्शन असल में एक दिलासा है कि जब तक ये पहिया घूम रहा है हर उदासी के बाद एक नई मुस्कान का आना तय है। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज दोस्त और दोस्ती पर बातें करेंगे। कुछ बचपन के साथी जवानी में बिछड़ गए, कुछ जवानी के साथी हमसफर बन गए और जैसे पति पत्नी, कुछ दोस्त बचपन से पचपन तक और कुछ उसके बाद भी साथ चले, कुछ हमें और सारे जग को छोड़ गए और उनकी याद हमेशा के लिए रहेगी, उनके लिए दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा नहीं कह सकते। विविध भारती ने कुछ दोस्त दिए, आज सुरीला सफर उनके साथ ही पूरा करेंगे, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और वाकई ऐसा होता है, स्कूल के बहुत से साथी छूट जाते हैं, अलग अलग शहरों में जब हम रहते हैं तो अलग अलग शहरों के साथ साथी छूट जाते हैं, कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं। तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखते हैं और जीवन के इस चक्र को किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है वाकई जो चीज़ें छूट जाती हैं उन्हें याद करते ही रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना है आपका फलसफा क्या है, ये सारी बातें आप हम तक भेजिए। तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना है और इस फिल्म में कौन होते हैं दो दोस्त ये भी बताइए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहली अक्टूबर से नो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नो फ्यूल नीति लागू करेगी। इसके अलावा नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के साथ साथ एनसीआर में 23 नए निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 1000 किलोमीटर शहरी सड़कों का पुनर्विकास भी किया जाएगा। सरकार ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इन पहलों की समीक्षा के बाद यह जानकारी दी। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजशेखर वुनरू ने बताया कि वर्ष 2026 के दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और रोहतक में 925 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। वर्तमान में 70 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जबकि 385 अतिरिक्त बसों के लिए खरीद आदेश जारी किए जा चुके हैं। शेष बसों की खरीद उच्च अधिकार क्रय समिति की स्वीकृति के बाद चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इससे स्वच्छ एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण की प्रभावी निगरानी के लिए 23 नए केंद्र स्थापित किए जाने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी। नए केंद्र 30 सितंबर से पहले पूरी तरह संचालित करने का लक्ष्य है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा के एनसीआर जिलों के सभी 2780 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक

0: एक नंबर प्लेट पहचान ANPR प्रणाली स्थापित की जा रही है। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत के 775 पेट्रोल पंपों को कवर किया जाएगा, जबकि शेष 2005 पेट्रोल पंपों पर भी निर्धारित समय सीमा से पहले यह प्रणाली स्थापित कर दी जाएगी। इसके लागू होने के बाद ईंधन भरवाने से पहले वाहन के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तय आयु पूरी कर चुके वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2883 पुराने वाहन जब्त और 2010 वाहन कबाड़ किए जा चुके हैं तथा स्वैच्छिक रूप से वाहनों को हटाने के लिए 6054 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल तीसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप 2027 का ध्वज प्राप्त किया। उन्हें यह ध्वज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के खेल विभाग के निदेशक सौरभ कुमार अरोड़ा द्वारा सौंपा गया। चीन के शाओक्सिंग में आयोजित दूसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026 के समापन समारोह के दौरान औपचारिक रूप से यह ध्वज सौरभ कुमार अरोड़ा को सौंपा गया था, जो वहां चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इसे चंडीगढ़ के लिए एक गर्व का क्षण बताया और कहा कि शहर प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैंपियनशिप के अगले संस्करण की मेजबानी करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह 1989 एशियाई रोइंग चैंपियनशिप के बाद से चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होगा और यह चंडीगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। प्रशासक ने बताया कि चैंपियनशिप सेक्टर 7 खेल परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत रोजगार जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पुराने शहर में जाकर या फिर अपने सोशल मीडिया के जरिए या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं, क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है।

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़े दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियाँ, क्योंकि आमतौर पर सखियाँ तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थीं और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहां पहुंचते थे एक ही समय में, तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा, वो किस्सा क्या है, हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं एक बार चेन्नई से जबलपुर के सफर में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तीस रफ्तार से अपना सफर तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेजी मेडिसिन या घरेलू दवाइयां थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक है। फिर भी लगातार फोन पर कॉन्टेक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती हैं और कहती हैं मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार की, कह रही हैं कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और इस खूबसूरत किस्से के जरिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई, और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के रिश्ते में, जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के जरिए या एक दूसरे के व्यवहार के जरिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन की इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए, कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बातें कुछ बीते जमाने की, या कहें जो बिछड़ जाते हैं ऐसे दोस्तों की, जो मिल जाते हैं वापस ऐसे दोस्तों की, और जीवन के इस चक्र की जो लगातार चलता रहता है और इसके पीछे कुछ छूटता है आगे कुछ मिलता है। हमारे साथी कहने के जीवन का चक्र का सही और सुहाना अर्थ आज के सुरीला सफर गीतों के माध्यम से दोहरा रहा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं गीतों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात लिखी कि आज की इबारत पढ़कर लग रहा है कि सुरीला सफर की ट्रेन के पहिए जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले कभी बारात कभी बिना सामान चले, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते, जहां एक पल थम के रोना होगा एक पल चल के हंसना, क्योंकि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, इसलिए कह गए ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी कहानी ये बात किसी ने नहीं जानी, जब हम सफर साथ छोड़ अपना छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले।

जीवन में साथ चलते चलते अंत में तो अकेले ही जाना है। इस बात से जुड़ा एक गुजराती गीत भी है, एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना। ये इन्होंने लिख भेजा है बहुत सारे गीतों को साथ जोड़कर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिने सृष्टि को दाद दी जाए, जिंदगी का एक भी पहलू नहीं छूटा, चाहे गीत हो, संगीत हो, राग हो या चित्रपट की कहानी हो। हमारे धुरंधर गीतकार जो 50 से 80 90 के दशकों में हो गए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जिंदगी को शब्दों में निचोड़ कर रख दिया, एक एक गजल में, एक एक पंक्ति में, एक एक गीत में। आज आशा है बहुत सारे गाने हमेशा की तरह सुनने का मजा आएगा। और इन्होंने गीत भी अपनी पसंद का लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय के साथ, जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, दोस्त यार समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, बस एक ही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है, वो है जीवन साथी का। एक और साथी कहते हैं कि जो भी कविता हमने जो भी इबारत लिखी है, इसके अंश का भावार्थ बहुत ही सरल, मार्मिक और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाले बदलावों को खूबसूरती से पिरोया है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि सच्चा साथी केवल समय है। जीवन के सफर में हमारे बहुत से मित्र, यार, दोस्त और संगी साथी बनते हैं। समय के साथ इनमें से कई पीछे छूट जाते हैं, कुछ ही हमारे साथ बाकी रह जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा इन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात लिख भेजी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज हमें अपने बचपन में जाना है, बचपन की वो बातें, दादी नानी की कहानी और किस्से होने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है, आज किस्से कहानी और पहेलियों से भरे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे शहर को भी लेकर एक कहानी कि जबली नाम के ऋषि रहते थे, उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा जबलपुर। तो ये बातें तो आप भेजी ने, साथ ही बताइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ी ऐसी बातें जिन्होंने आप से जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजते हैं या जिनसे मिलकर आपको बड़ा आनंद आता है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब तक हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत, जो भी जीवन के इस दर्शन को बिल्कुल सार्थक बताता है। और इस गीत में कौन है नायक ये बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए।

परिचय फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत में नजर आते हैं जितेंद्र। ये हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी अनायास ही कहीं कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं सदा के लिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं जीवन में किसी भी समय कोई भी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार और परिवार वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी और दोस्त ही साथ देने पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं जिन्हें परेशानी आ रही थी सुरीला सफर की पोस्ट पर जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही पोस्ट आती है, उस वक्त तो नजर आती है लेकिन जब 1 बजे कार्यक्रम आता है तो किस तरह से उस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर उस वक्त सुरीला सफर की पोस्ट देख पाते हैं, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज अगर आप खोलते हैं तो वहां आपको कुछ थोड़ा स्क्रोल करने पर 2-3 पोस्ट के नीचे ही सुरीला सफर की पोस्ट नजर आ जाएगी और आप वहां कमेंट के जरिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक दोस्त जो कि हमारे साथ 1980 में पढ़ा था, एक दिन में अपनी श्रीमती जी को ट्रेन पर छोड़ने गया तो वहां पर वो दोस्त मिला। वो तो नहीं पहचाना पर मैं पहचान गया, जब उसको याद दिलाया तो वो भी पहचान गया, वो उसी ट्रेन में टीसी था। ये मुलाकात साल 2000 में हुई थी। वाकई बहुत ही मजा आया होगा आपको मिलकर। और ये भी अक्सर होता है कि लोग इतनी बदल जाते हैं चेहरा वगैरह कि हम पहचान नहीं पाते, तो जो पहचान सकता है वो दोस्त ज़रूर सबको खोज लेता है। और वाकई हर टीम में या कहते हैं कि हर दोस्ती वाले जो एक ग्रुप होता है उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुराने पुराने साथियों को खोज खोज कर लाता है और सबसे मिलवा देता है। तो क्या आप भी ऐसे ही दोस्त हैं, हमें बताइएगा। हमारे एक और साथी का कहना है कि बहनें मिल जाती हैं लेकिन सहेलियां नहीं मिल पाती। वाकई ये बात भी सही है। हमारे एक और साथी कहते कि जीवन में सभी रिश्ते बने बने मिल जाते हैं लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे स्कूल के ज़माने की दोस्त की हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है कि यार मेरा साथ मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है दोस्ती का रिश्ता, निस्वार्थ, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। मेरी जैसी दोस्त सबको मिले, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं लेकिन उससे बिछड़ने का दुख मुझे सता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचें क्योंकि आपकी दोस्त आपके साथ है और जब दोस्त साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो अपने मन में सकारात्मकता रखिए कि वाकई आपको जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी और इलाज तो आप करवा ही रही होंगी, उस पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी बातें कही जाती हैं चिकित्सक की ओर से आपको उसका ध्यान रखिए और समय पर दवाइयाँ लीजिए, आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगे हम कहते हैं। और आपकी दोस्त के का जो भी आपके साथ में प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, आप दोनों का साथ भी बना रहेगा, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने की जो उत्सुकता होती थी उसकी तुलना आज के किसी भी लग्जरी ट्रिप से नहीं की जा सकती। रात को छत पर चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच नानी या दादी को घेर कर बैठ जाना और फिर शुरू होता था कहानियों का एक ऐसा अटूट सिलसिला जो हमें नींद की आगोश तक ले जाता था। वाकई और कई बार तो नींद उड़ जाती थी कहानी सुनने की चाह में कि कहीं कहानी का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो छूट ना जाए। और जो अपने मामा मामी मामा के बच्चे होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, उनसे भी तो एक बड़ी दोस्ती होती है जो गर्मी की छुट्टियों में ही निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो कही हैं, हमें ये भी बताइएगा कि किसी तरह से आप अपने बिछड़े दोस्त या सहेली से मिले और मिले तो वो किस्सा क्या है। और ये भी बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें संगीत किसका है।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुरीला सफ़र कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और हमारे साथी कह रहे कि आज की भारत जीवन संघर्ष की भावनात्मक कहानी का चित्रण कर रही है। लोग आते हैं जाते हैं लेकिन जीवन तो चलता रहता है। आदमी जिंदगी के सुख दुख और धूप छांव जैसी कहानियों का किरदार बना रहता है। हमारी कौर साथी कहते हैं कि जीवन का पहिया समय के अनुसार आगे बढ़ता जाता है। दोस्त साथी नाता रिश्ता पीछे छूटता जाता है और मुसाफिर अपने रास्ते झूमते तरसते बढ़ता जाता है। यही जीवन की रीत है। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगों से सजी कवितामयी लघु भारत स्वागत योग्य है। बाल्यकाल की निस्वार्थ पवित्र मित्रता से जुड़े संगी साथी युवा काल तक आते आते सम अभिरुचि और समानांतरता तक सीमित रह जाते हैं। तत्पश्चात गृहस्थ काल में उत्तरदायित्व के दलदल में आकंठ फंसे दिनचर्या में वो संख्या यादों में ही सिमट रह जाती है। शुक्र है तकनीकी तब्दीली से प्राप्त सोशल मीडिया का, जिसने उत्तरार्ध में पुनः उन्हें एकत्रित कर जीवन में उमंग भर कर उन मैत्रीपूर्ण स्वर्ण युगों को पुनर्जीवित कर दिया है। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि कितना अकेलापन है इस भीड़ भरी दुनिया में। इस भीड़ भरी दुनिया में आखिर हम दिल को कहां ले जाएं। लोग आते हैं मिलते हैं कारमा बनता है, फिर भी हर किसी को अकेले आए थे अकेले जाना पड़ता है। जीवन की नैया चलती रहेगी, उम्र बीतती जाती है। फिर दादी बताती है कि सब कर्म का, कह रहे हैं कि सब कर्म का भोग है, यही जीवन है। इस जीवन

का यही रंग रूप है, चलते रहना हमारा काम है। ऊपर वाले मांझी के हाथ में हमारी डोर है और हम तो बस कठपुतली हैं, वही हमारा खेवैया है, वही तारणहार है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कह रहे कि मेरा दोस्त तो पढ़ाई के दौरान ही इस जीवन को छोड़कर चले गए। दुख तो इस बात का है कि एक ही मोहल्ले में थे और एक ही स्कूल में साथ रहा करते थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कहने को तो सब रिश्ते नाते हैं, सबके सब हैं, यहीं रह जाते। आज भले ही लगा है मेला, अंत समय तो चला अकेला। माया का बाजार लगा है, जिसको देखो वही सगा है। लेकिन आंखें कब भराई जब देखी उनकी सच्चाई। सब स्वार्थ के मीत हैं सारे, अंत समय बस राम है प्यारे। वही हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम 1978 के कॉलेज बैच में अभी तक वार्षिक भेंट करते हैं। समूह का नाम भी रखा है पुनर्मिलन 78। दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज कॉमन रूम में है। वही हमारे एक और साथी कहते हैं कि एक बात बताना चाहती हैं, अभी भी कभी भी हम किसी अपने प्यारे से दोस्त को याद करते हैं तो, या उसकी कोई बात सामने आ जाती है तो, या उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहते हैं कि मैंने आपको अभी याद किया। कभी कभी किसी दोस्त का प्यारा सा एहसास ये याद दिलाता है कि कोई है जो हमें दिल से याद कर रहा है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जहाँ याराना वो खूबसूरत रिश्ता है, जहाँ शब्दों से ज्यादा एहसास बोलते हैं। सच्चे यार हर खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में साथ निभाते हैं। जिंदगी की राह में याराना ही सबसे अनमोल खजाना है। वाकई, और जीवन में इस तरह की जो बातें हैं वो लगी रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितनी मुश्किलें हैं, और कई बार लगता है कि बस जीवन तो इसी तरह से चलता रहता है, ये मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किसकी आवाज में है।

0: तो कभी छाँव,
1: कभी धूप कभी छाँव। कवि प्रदीप की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे, चित्रगुप्त का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, संगीत किसकी आवाज में गीत है हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में कई दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, कुछ समय के साथ दूर हो गए, कुछ यादों में बस गए, लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना मैं अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हमने साथ खेला, साथ हंसे, छोटे छोटे सपने देखे और जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा है। कभी कभी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हुए दिन अचानक याद आ जाते हैं और मन भावुक होता है। भाई ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको बचपन से ये साथ मिला, कितनी अच्छी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला रीयूनियन चलन में है। विदेश से आया एक सहपाठी अहमदाबाद शादी में सम्मिलित होने आया और उसने एक रीयूनियन का आयोजन किया। जिन दोस्तों से स्कूल में होते हुए भी नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है। वही मारिक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविता साझा की है, जीवन के सुप्रभात खिल रहे कमल धर पग पायल मन पटल पर नयन जीवंत हो तुम, अंतर मन में निरंतर अनहद धवन चल रहा है, हर मन प्यार पानी कंठ भर रहा हूँ, स्वर तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कविता भेजते हैं तो एक जहां उसमें जो पंक्तियां होती हैं उस तरह से अगर लिखें तो ये बहुत ही आसान होगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी तरह से सामने आ पाएगी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड मुझे फेसबुक पर मिले और हमारा लकड़ी वाला था वहाँ के फ्रेंड भी फेसबुक पर मिलके, सहेलियाँ और दोस्त भी, सुरीला सफ़र के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार उन्होंने कहा, तो इनके सारे जो दोस्त यार हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर मिल गए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई जो 2002 में अचानक से पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया था और रातों रात, और 2 महीने पहले उसी का फ़ोन आया मेरे पास। वाकई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको अचानक फ़ोन आना, दोस्त को अचानक नंबर मिलना और आपके पास अचानक फोन आना। वही हमारे साथी कह रही कि मैं छोटा था तब एक गांव में रहता था, वहां मेरे दोस्त अब शहर में आने के बाद छूट गए। आज 40 साल की उम्र के बाद कोई मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपको याद करेगा और आप भी उसे याद रखते होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन के अनवरत सफर की कहानी कहती है, जहां दोस्त रिश्ते और अपने समय के साथ पीछे छूटते जाते हैं, लेकिन जीवन का पहिया लगातार चलता रहता है। कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी दुख की छाया। मुसाफिर की तरह हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और दादी नानी की कहानियों की तरह जीवन हमें हर मोड़ पर नई सीख देता है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है और यही आज की भारत का मूल संदेश भी है। वही हमारे साथी कह रही कि मेरी सहेली से 35 साल बाद मिली और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आज भी हम दोनों बहुत बातें करते हैं। वाकई सहेलियों का वापस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अलग अलग जगह विवाह के बाद चली जाती हैं सहेलियां आमतौर पर, और उसके बाद उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी अगर थोड़े पुराने ज़माने की हों जब सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था या फ़ोन उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं जब सभी सहेलियां वाकई भावुक हो जाती हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफर में और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं। हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहाँ पुरानी क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला, स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला, एक अलग ही तरह का माहौल था। उस दिन सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाए जाते हैं, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहाँ मौका मिलता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमारे एक साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलुमनी मीट में और वहाँ उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे को साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे। दर्शन के बाद हमारी वहां पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ। फिर हम वहां से टैक्सी किराए पर लेकर जिणमाता सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए और उस परिवार से आज तक मोबाइल से रिश्ता बना हुआ है। तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिले, हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, सालों बाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है, भगवान उसे जल्दी ठीक करे, अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। भाई अगर डिप्रेशन में गई भी हैं तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनका साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहां पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की, बाकी साथी तो बिछड़ गए लेकिन एक दोस्त

किसे 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई, हमने पुरानी बातें की, तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें, यादें ताज़ा की होंगी। तो चलिए एक याद ताज़ा कीजिए इस गीत के साथ, और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

पिया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से इतने 40-45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गांव के काम से गाँव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो होने लगा, उनकी बहस होने लगी तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। शोर सुनकर बगल वाले कोच से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा, बोला अरे तू, और मैंने उसे पहचाना है लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, तो कितनी अच्छी मुलाकात रही होगी ये। और जीवन का भी ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा, कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, बताइए किसकी आवाज में।

सचिन देव बर्मन की आवाज में गाइड फिल्म से गीत आपने सुना। यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें। और आपकी एक साथी विविध भारती तो हमेशा आपके साथ है। सुरीला सफर जारी रहेगा विविध भारती का, लेकिन ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: and returning home. However, he warned that the outbreak is far from over. Back home, the IMD has said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Describes Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. US Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और

0: कल्चर्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IPCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा

0: कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि थाने के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट

0: कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने, फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजती हैं, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगर गाँव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है। नीरज के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक के आर एस अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे आर्या प्रियंका बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं, अलग अलग जगहों से एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शे के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज, ऋतुराज पाटिल, प्राची, प्राजक्ता, प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो?
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो।
0: अब छिपाओ दुराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूं, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी

0: असर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
1: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती। खूब कहा आपने, दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप। कीजिए, शान से कीजिए।
0: भारती, देखो तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
1: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
0: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
1: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
0: रियली?
1: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
0: भारती?
1: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
1: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
1: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम इन्हें जानती हो?
1: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊं भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए है ना।
1: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा।
2: ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो। अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
1: मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है। उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
1: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
1: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
1: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयां।
2: शुक्रिया,
1: मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताकती रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणी के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जस्ता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति।

0: नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमर आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है। पर मामा जी, भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
1: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
0: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझ अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
1: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
0: और माता जी?
1: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
0: फिर क्या हुआ?
1: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
0: और आजादी मिलने के बाद?
1: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
0: बेचारी दुखियारी माँ।
1: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
0: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी, उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना।
1: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
0: क्या बात है मामा जी?
1: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरासदार रईस कुमार सामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
0: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणी अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
1: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो, ये मत भूलना।
2: हाँ हाँ आप

0: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस दादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणी, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक एक करके पूछिए ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है,
2: फिर आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है, मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए

0: ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
0: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाए, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
2: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है। नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
3: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
2: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
3: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
2: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिख कर दे दिया है।
3: भारती, तुम?
2: अच्छा, तो ये बात है।
3: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
3: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
2: सुना आपने?
3: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
2: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
3: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
3: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
3: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
1: क्या हुआ मामा जी? मामा जी, क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
3: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
1: ले जाइए, ये लीजिए पानी। दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी, एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: और डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो।
0: ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर।
1: अरे ए उमा भैया अट्टहास कैसा?
0: अरे भाई पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
1: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
0: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
1: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो?
0: बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर।
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई?
0: जानम्मा जी ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
1: जी बहुत अच्छा। अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
0: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
1: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
0: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
1: अच्छा अच्छा

0: दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
1: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है? तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
0: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं। दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
1: भारती, तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
0: ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
1: तो
0: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ। इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
1: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाए।
0: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
1: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
0: अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
1: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
0: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डेंग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
1: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
0: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
1: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो
0: ये बात है। डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
0: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
1: वो क्या?
0: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
1: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
0: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
1: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, और दूसरी बात तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब हैं, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चल चल
1: कंपाउंडर, वो बस ले आओ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी,

0: मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
1: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
0: मुझे किसी का डर नहीं है।
1: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
0: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वो दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
1: लगता है इसके साथ
0: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में 3-4 गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
1: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
0: मामा जी, आपने दवा खाई थी? कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
1: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
0: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
1: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
0: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
1: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
0: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
1: ये ना भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
0: काश मैं मर्द होती।
2: डॉक्टर अम्मा!
0: कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
2: डॉक्टर अम्मा!
0: देखती हूँ कौन है।
1: रात के 10 बज चुके हैं।
2: डॉक्टर अम्मा!
0: अरे नागमणि, तुम क्या बात है, इतने बेचैन क्यों हो?
2: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
0: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
2: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगे तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
0: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी, मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
1: जानम्मा, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
2: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा,
0: जल्दी चलो। नागमणि, आइए चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: नागमणि, धमकाती है, जानती है हम कौन है।
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है? अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं मेरे के तेरे। कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए। अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
3: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की

0: विंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके विंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: Servants, lights,
1: sound,
0: camera, action.
2: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
3: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
4: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
3: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
4: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
3: ये 1973 में, 1973
4: में
3: हरियाणा से मुंबई आ गए?
4: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
3: हाँ।
4: दिल्ली से मुंबई आया।
3: अच्छा।
4: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
3: जी,
4: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई।
3: अच्छा।
4: थी उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम

0: थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
1: अच्छा, तीन दोस्त आए थे।
0: हाँ। मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
1: अच्छा,
0: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
1: कौन? आप?
0: सुधाकर।
1: अच्छा।
0: बोला ये तो शक्ल से चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
1: अरे,
0: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए।
1: अच्छा।
0: मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बंबई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
1: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
0: याद आता है वो।
1: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
0: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था। और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे।
1: अच्छा।
0: पूरा खर्चा वही लोग करते थे।
1: हुँ।
0: लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं देते थे?
0: नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से। मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1-1.5 साल लगभग आप यही काम करते थे?
0: यही काम करते।
1: ये संघर्ष जो,
0: अब इसको आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था।
1: हाँ।
0: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी।
1: अच्छा।
0: तो एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं था।
1: पैसा मिल जाता
0: इतना
1: था,
0: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो? मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया।
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता हूँ।
1: बताइए।
0: और वो गाना है बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आए।

0: बीच माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है तो ठीक है, आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप
1: नहीं,
0: शंकर जी के सानिध्य में रहे क्या?
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे? कुछ
1: लगभग 250-250 गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया।
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियां ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा।
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है। मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो जाते,
0: ऊर्जा आ जाती थी। हाँ, मोटिवेशन
1: था,
0: मिलता था,
1: मोटिवेशन होता
0: कि
1: था
0: कभी हमारा भी ऐसा घर,
1: कभी हमारा भी होगा। दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा, वहां का एक अलग ही चलन था।

0: वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा,
0: अब वो पैसे कौन देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार साहब के प्रति ना, इस दीवानगी में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि भूख प्यास भी होती है ना आदमी को। तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे। जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहाँ आइए, तो मैंने वहाँ उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रही उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
1: जी, खैर ये तो
0: कहीं ना कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊँ
1: जो हसरत साहब जैसा होगा,
0: उनके जैसा हो सकता है
1: जी,
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत
0: जी,
1: साहब
0: जी,
1: को।
0: जी, जी, बिल्कुल।
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर, है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले
0: जी। एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का
1: जी।
0: क्या है प्यार बताओ।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंदराज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं।
0: हाँ।
1: तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहां पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी।
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी।
1: जी, जी।
0: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई।
0: अच्छा।
1: थी। लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रही। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियां बीबी रहते ही थे वहां पे। तो वहां मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
0: अच्छा।
1: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये

0: गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो।
1: हम्म,
0: मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा।
0: जी। और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो तो
1: शानदार और लेजेंड से थे
0: उनका
1: वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना।
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा।
0: वाला थे
1: बहुत बहुत।

0: और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली
1: जी। तो वो कौन सी फिल्म थी?
0: वो फिल्म थी गोरी।
1: गोरी,
0: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
1: अच्छा।
0: विजय त्यागी।
1: विजय त्यागी,
0: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोर दा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं, क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
1: हाँ।
0: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, तो बोले अच्छा जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
1: अरे
0: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही है। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो हमने कहा 1 रुपया और रखो इस पे, तो 1 रुपया रखा। उन दिनों कागज का चलता था, उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
1: अरे क्या बात है।
0: और उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को, और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही?
0: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की।
1: क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं।
0: इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी।
1: अच्छा।
0: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ।
1: हाँ।
0: और उसके बाद जो है ना लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
1: अच्छा।
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था। एकदम बेकार, मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊं, तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, ओके। लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था
1: जी।
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है, मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग था
1: जी, जी।
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे दिया।
1: हाँ।
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
0: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर लेकिन

0: वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा,
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो हटके
0: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है,
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बनाई।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें।

0: समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
1: एक आपका
0: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
1: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
0: बहुत सुंदर
1: है। इसमें पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
0: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत धैर्य से करते हैं।
1: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
0: जी जी।
1: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
0: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए।
1: हाँ हाँ।
0: वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये ओढ़ली पैंतरा था।
1: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये, जिसे हर एक को समझना आसान नहीं था।
0: जी, जी।
1: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
0: जी,
1: से में गवाया, तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी कहानी होती है।
0: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू गाए, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को, मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं, हाँ वो जो हैं बस वही हैं
1: जी,
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, और नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा वो करता है, वो करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की,
1: अच्छा
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा खेला,
0: पैतरा हो गया।
1: जी।
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये वो, मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है, तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं चुप हो गया, बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या गया वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि उनका गाना है। तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर

0: तो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकते।
1: गा पाएंगे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया, शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूं, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए।
1: अच्छा दो लाइन के लिए भी आए?
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है क्या है ये। हमने कहा सर एक मेरी लाइन है वो तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी, और काजोल की आंखें जब एकदम हाईलाइट होती हैं उस
0: जी,
1: गाने में, और सलमान गाते हैं
0: गाते
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता है, बहुत सुंदर।

0: कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ नहीं करना, है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा

0: तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है,
1: बिल्कुल,
0: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
1: बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
0: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
1: हाँ,
0: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
1: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है, तब जाके शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
0: जी, जी,
1: बनाई है, तो
0: जी,
1: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल
0: कॉन्वेंट स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माय फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं
1: जी।
0: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके, तो अब ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
1: हाँ हाँ।
0: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर।
1: हाँ, हाँ, जी,
0: भले बाद में उसको पता लगेगा ये मेरी बहन की सच्चाई,
1: हाँ, हाँ,
0: लेकिन पहला उसका जो
1: रिएक्शन आएगा
0: तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके और भैया को तू खटके।
1: हाँ, अच्छा।
0: और ये गाना कंप्लीट हुआ
1: जी, जी।
0: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट हुए
1: जी।

0: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, क्यों आए,
1: क्यों आए,
0: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
1: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े ना लाएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
0: अच्छा,
1: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ।
0: जी, ये सबसे बड़ी
1: अपनी बात को रखते हुए
0: जी,
1: मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे तो दादी भी नाचेगी।
0: अच्छा।
1: और दादी गाएगी भी।
0: अच्छा।
1: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा।
0: हाँ हाँ।
1: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी, अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे, और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा। मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है, तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
0: जी, जी।
1: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया,
0: क्या बात है,
1: और उनको बुलाया, गाना वाला लिखा हुआ नहीं था तब तक।
0: अच्छा।
1: पहले सिंगर तो मिले, तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है या सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं, और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं। उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
0: जी।
1: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
0: जी।
1: यहाँ तक तो दादी गाती है।
0: हाँ।
1: अब लड़का क्या जवाब दे। हाँ। दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
0: क्या बात है।
1: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
0: जी।
1: गीत सुनाइए।
0: मैं आपसे यही कहने वाली थी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म हमरा।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र से कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5 बजते हैं, अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद शाम 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने, और 5:10 से 5:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम कार्यक्रम प्रसारित करेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। शाम 5:30 पर युवा दोस्त सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

डॉक्टर रिचा त्रिवेदी आज प्रस्तुत करेंगी गीता संदेश। शाम 6:20 पर आज सुनिएगा अध्याय 7 से श्लोक 6 और 7 की व्याख्या। किसान वाणी शाम 6:30 पर और ग्राम संसार का समय शाम ठीक 7 बजे से। फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय जवान होगा शाम ठीक 7:30 पर और गैर फिल्मी रचनाओं के कार्यक्रम गुलदस्ता का आप आनंद ले पाएंगे शाम 7:45 पर। कुछ बातें कुछ गीत रात्रि 8 बजे। आज का ये कार्यक्रम सीमित रहेगा 15 मिनट के लिए और इसके बाद 8:15 से आगे आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा। आज के इस कड़ी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ पर सारी जानकारी। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें रात्रि ठीक 10 बजे से और इसके साथ साथ विविध भारती के कार्यक्रम भी आप श्रोता साथी सुन सकते हैं। फिल्म संगीत का पहला कार्यक्रम आपके लिए होगा रात्रि 9:15 पर और दूसरा कार्यक्रम छाया गीत होगा रात्रि 9:30 पर।

समाचारों के समय इस प्रकार से रहेंगे। हिंदी में समाचार शाम ठीक 6 बजे, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 11 बजे। अंग्रेजी में समाचारों के समय इस प्रकार से रहेंगे, शाम ठीक 6:05, रात्रि ठीक 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं और प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:10 पर। तो ये थी आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी आप सुन रहे थे आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता दोस्तों, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में धर्मवीर फिल्म से ये गीत।

फिर से कार्यक्रम गाने नए पुराने में, और अब आपको सुनवा रहे हैं हम उदित नारायण की आवाज में डर फिल्म का ये सदाबहार गीत, बोल समीर के, धुन जतिन ललित की।

तो दोस्तों डर फिल्म का

गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। कार्यक्रम गाने नए पुराने में लीजिए अब सुनिए। पतिता फिल्म से ये गीत

पतिता फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम गाने नए पुराने में श्रोता दोस्तों लीजिए अब सुनिए मोहरा फिल्म का ये गीत।

FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:30 होते हैं। अब युवा दोस्त सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले युवा शक्ति को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम युवाणी में युवा दोस्तों के लिए आज हम लेकर आए हैं कुछ सदाबहार फिल्मी गीत और कुछ जानकारियां। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एक बार गीत संगीत की दुनिया में और आपका करवाते हैं मनोरंजन। और श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम की जो पहली पेशकश है वो हमने ली है रॉकी फिल्म से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नजर।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस

0: सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
1: श्रोतो दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में लीजिए अब सुनिए संघर्ष फिल्म में सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

0: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIILM विश्वविद्यालय में,
1: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
0: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIILM यूनिवर्सिटी कैथल।
2: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
3: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
2: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
3: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
3: 8708903436।

तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम बंधन फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए प्रेम बंधन फिल्म के साथ ही कार्यक्रम युवाणी समाप्त करने की अपने दोस्त नवीन को इजाजत दें। नमस्कार।

0: शाम 6:10 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले करेंगे। तो कुछ क्षणों की प्रतीक्षा और उसके बाद हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को GPS प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए और हरियाणा में कल से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान के तहत लगभग 36 लाख बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को GPS प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए हैं ताकि उनकी नियमित निगरानी की जा सके। मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक घर से नियमित रूप से कचरे का संग्रहण हो तथा कहीं भी गंदगी के ढेर न लगने दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लोगों का अधिक आवागमन रहता है, वहां विशेष रूप से साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। सड़कों की नियमित सफाई के साथ साथ उनके किनारों पर वन विभाग द्वारा फूलदार एवं आकर्षक पौधों का रोपण भी कराया जाए। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में वार्ड समितियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए उनके लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए ताकि समिति के सदस्य एवं नागरिक अपनी समस्याएं एवं सुझाव सीधे साझा कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता कार्यों के लिए नई आवश्यकताओं एवं आधुनिक तकनीकों के अनुरूप ही टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियां अभी से शुरू करने तथा इसका विस्तृत कैलेंडर जारी करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्रैमासिक आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के वार्डों की स्वच्छता एवं कार्य प्रणाली की रैंकिंग तय करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों और सफाई कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जाए। मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी बड़े नालों, नालियों एवं ड्रेनों की व्यापक सफाई 30 जून तक हर हाल में पूरी करने और गलियों की नालियों की नियमित सफाई करने और उनमें आवश्यकता अनुसार चूने का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए ताकि जल भराव एवं संक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध

0: है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विभागों के मुख्यालयों एवं जिला स्तर के कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। आज मानव संसाधन विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्येक माह अपने कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली CFMS के संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने, उनकी जिला एवं मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा करने तथा इंट्रा हरियाणा पोर्टल का सभी विभागों में प्रभावी एवं अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा में कल पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान लगभग 36 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 28 जून को 17,331 बूथ स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद 30 जून तक 34,000 टीमों द्वारा घर घर जाकर छूटे गए सभी पात्र लाभार्थियों को पोलियो बूंदें पिलाई जाएंगी। जींद प्रशासन कल से शुरू हो रहे 3 दिवसीय पोलियो पल्स अभियान के लिए तैयार है। उप सिविल सर्जन एवं पल्स पोलियो अभियान के जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजेश भोला ने आज कहा कि इसके लिए सभी प्रशासनिक व चिकित्सा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता और सिविल सर्जन की देखरेख में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद अभियान को अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: देखिए, हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले भी जैसे पल्स पोलियो का अभियान चलता रहा है, उसी तरीके से जैसी सरकार की हिदायत है 30 जून तक पल्स पोलियो का कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिला जींद के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। डीसी महोदय ने आम जनता से आह्वान किया है कि अभिभावक अपने 0 से 5 वर्ष तक के जितने भी छोटे बच्चे हैं सभी को 28 जून को पल्स पोलियो का जो पहला दिन है बूथ पर जाकर ही सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाएं।
0: उन्होंने बताया कि इस बार जिला जींद में 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 1,38,044 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 17वें बैच के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री संधू ने कहा कि आधुनिक प्रबंधन का दायरा अब केवल दक्षता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में वैश्विक चुनौतियों, तकनीकी बदलावों और समाज के प्रति निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। श्री संधू ने विद्यार्थियों से कहा कि नेतृत्व का आधार अधिकार का प्रयोग नहीं बल्कि स्पष्ट सोच, परिस्थितियों के अनुरूप समय को ढालने की क्षमता, ईमानदारी और विश्वास अर्जित करने की योग्यता है। उपराज्यपाल ने प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता की शक्ति का उपयोग करें तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में योगदान दें। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बाद में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के कुलपति के साथ बैठक भी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों के परिवर्तनकारी प्रभाव और समस्याओं के समाधान में उनके प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई। पलवल के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने आज जिले के सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं त्रुटि रहित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक की भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाती है। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी देते हुए डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा,
2: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR 2026 का कार्य हमारे जिले पलवल में चल रहा है। पलवल के ज्यादातर BLOs ने SIR 2026 के इन्यूमरेशन फॉर्म्स या परपत्रों के वितरण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है और अब सभी BLOs घर घर जाकर ये फॉर्म्स या परपत्र एकत्रित कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे। मेरा पलवल जिले के सभी मतदाताओं, विशेषतः युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन से विनम्र अनुरोध है, इस प्रक्रिया में सहयोग दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में

देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को GPS प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओ, शाम के 6:20 होते हैं। लीजिए अब सुनिए डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी से आज का गीता संदेश।
1: श्रोताओ नमस्कार। गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 6 और उससे आगे की व्याख्या सुनेंगे। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संसार के सब प्राणी इन दोनों से, जड़ प्रकृति तथा चेतन जीव से उत्पन्न होते हैं, यह समझ ले और मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात मूल हूँ। मैं ही इस संपूर्ण जगत का प्रलय हूँ अर्थात अंत हूँ। इस जड़ चेतन का अधिष्ठाता मैं हूँ। जैसे शरीर में आत्मा है, वह शरीर का अधिष्ठाता है, वैसे इस जड़ चेतन जगत का परमेश्वर अधिष्ठाता है। जैसे आत्मा का दर्शन इस शरीर द्वारा ही होता है, वैसे परमात्मा का दर्शन इस जड़ चेतनमयी सृष्टि द्वारा ही होता है। हे अर्जुन, सब प्राणी मात्र का आदिम तथा अंतिम घर यही है, यह निश्चय से जान। मेरे अहम का यह मुख्य भाग जो स्थूलदर्शी लोगों से छिपा हुआ है तथा जिसे कोई कोई तत्वज्ञानी ही जानते हैं, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, इसी अध्याय के 3रे श्लोक से जाना था। वह अपनी अपार अगम्य अगोचर शक्ति से मुझे सदा यह अनुभव कराता रहता है कि इस संपूर्ण जगत का प्रभव कारण तथा प्रलय कारण मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ नहीं है। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर इस प्रकार गुथा हुआ है जैसे माला के मण के माला सूत्र में पिरोए रहते हैं। अर्थात हे धनंजय, मैं इस जड़ चेतन का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। मुझसे परे अन्य और कोई पदार्थ नहीं है। जो कुछ भी संसार में यह सब है, वह सब मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे मणियां धागे में पिरोई रहती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो वर्तमान संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे सिवा इस

जैसे संसार मुझ में गुथा है वैसे पिरोई हूँ धागे में मणियाँ, जैसे संसार मुझ में गुथा है वैसे, अर्थात जाति वर्ग वर्ण रूप रंग अनेक हैं, अपने अपने प्रारब्ध अनुसार कोई निर्धन धनवान पदाधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय चेतना सब में एक है। ठीक वैसे ही जैसे माला में मणियाँ मन के अनेक लेकिन सूत्र एक, मानसिक शांति पारिवारिक सद्भावना सामाजिक समरसता राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की दिव्यता

0: छिपी हुई है इस गीता भाव में। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता में इतनी साम्यता है कि गीता के उद्बोधक भगवान श्री कृष्ण को तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, अर्थात उपनिषद रूपी गायों का दोग्धा कहा गया है। महर्षि वेदव्यास, जो उस धर्म युद्ध की सभी घटनाओं के साक्षी थे, कौरवों और पांडवों के पितामह थे, उनकी जय नामक वास्तविक कृति थी जिसमें 8,800 श्लोक थे, जिसमें उन्होंने इस धर्म युद्ध का उल्लेख किया। भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 45 मिनट अर्जुन को, जो किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था, धर्म का अर्थात अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का उपदेश दिया। उन 45 मिनटों में मुख्य उपनिषदों का जो वर्ण्य विषय है, परमात्मा, ईश्वर, जीव, प्रकृति, त्याग पूर्वक भोग, विद्या अविद्या, तप, एकत्व, नानात्व, ओंकार का महत्व, निष्काम भाव से कर्म इत्यादि का अत्यंत उच्च कोटि के भाव से ऐसा प्रेरित किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में फिर जो हुआ हम सभी अवगत हैं। हम सभी में एक अर्जुन है। आज समाज का अधिकांश वर्ग शिक्षित है, अत्यंत शिक्षित होते हुए भी जब विपदा में पारिवारिक बंधन समक्ष आते हैं, उनसे आमना सामना होता है, जो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आती है, व्यक्ति धर्म संकट का सामना करता है। धर्म और अधर्म के संघर्ष की उस निर्णायक घड़ी में एक कृष्ण की, एक ऐसे सखा की आवश्यकता होती है जो धर्म संकट से उभार दे, हमें वास्तविक कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करे, क्योंकि मित्र दुखी हो या सुखी, वह सदा मित्र का परम आश्रय होता है। मित्र बना लेना सुकर है, पर मित्रता निभाना दुष्कर है। भगवान श्री कृष्ण ने जब जब अर्जुन के लिए संकट की घड़ी आई, अपनी मित्रता निभाई। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से मनुष्य को यह भी सीखना है कि मित्रता निभाने का स्तर अति उन्नत हो। मित्र की सहायता उस समय अवश्य करें जब उसके सामने कोई श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त न हो। संकट की घड़ी में कायरता के हीन भावों को धुएं की तरह उड़ा दे, अनार्य भावों को हृदय में न आने दे। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण जैसा मित्र पाने के लिए अर्जुन बनना होगा, निर्मल निश्चल शुद्ध मन वाला। श्रीमद् भगवद गीता सभी के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस गीता का प्रत्येक श्लोक स्मरण करने योग्य है। इनका चिंतन मनन करें, क्योंकि जो मननशील है वही मनुष्य है। जीवन बहुमूल्य है, अपने जीवन की श्रेष्ठता को समझें। जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वह व्यवहार हम दूसरे पर भी लागू न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, विदुर नीति यही कहती है, जो महाभारत से ही संदर्भ रखती है अपना। गीता उपदेश के माध्यम से आपने यह भी जाना, यह मानव शरीर परमात्मा ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और अपनी उत्कृष्ट बुद्धि चिंतन मनन से ईश्वर के दर्शन करने का श्रेष्ठतम उदाहरण है। हम अपना दृष्टिकोण जितना ज़्यादा वैज्ञानिक रखेंगे, परमात्मा के मूल स्वरूप के उतना ही समीप आते जाएंगे। उस समय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सदृश और भी किम कर्तव्य विमूढ़ रहे होंगे, लेकिन सभी मूक दृष्टा बने थे, क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण जैसा मित्र नहीं था। हमें श्रीमद् भगवद गीता से यह संदेश भी मिलता है कि वह मित्र ही क्या जो अपने मित्र को सद्धर्म का पाठ न पढ़ा सके। प्रिय श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने गीता के 7वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक की व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ऋचा त्रिवेदी से आज का गीता संदेश। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र।

एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:30 अब होते हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहनों और भाइयों, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो गर्मी में आप अपना हमेशा जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते भाई गर्मी में सुबह शाम भी अब गर्मी ज़्यादा लगने लगी है। और कोशिश जरूर करें भाई, अपने जो दिनचर्या के जो भी काम है भाई, सुबह शाम आप करें और दोपहर को भाई कम ही निकलें। अगर जो निकलना भी पड़े तो आपको साथियों सिर के ऊपर कोई कपड़ा, सूती कपड़ा या अन्य डक्का चलना चाहिए, ताकि भाई लू नहीं लगे। और कार्यक्रम किसानवाणी में साथियों हम बहुत कुछ लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा जरूर करते हैं। और आज कार्यक्रम किसानवाणी में हम जो बातचीत लेकर आए भाई, चर्चा का हमारा विषय रहेगा किसान सम्मान योजना। और उसके साथ ही भाई आज की जो नसीहत है उसमें हम जिक्र करेंगे धान की सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण व अन्य देखभाल के बारे में। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारियां रहेगी भाई, अतिरिक्त आय के रूप में बागवानी का किसानों के लिए महत्व, तो भाई महत्वपूर्ण सभी चर्चाएं हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से करते हैं, और आज का हमारा कृषि प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है। भाई सब्जी का नाम बताना जो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और सब्जी तो भाई सारा नबेरा है, तो आपने बता देना भाई धान है, गेहूँ है, आलू सब्जी है, तो जिस तरह ये कोई भी है भाई सब्जियाँ तो आपने ज़रूर बतानी है। मूली भी है, गाजर भी है, आलू भी है, भिंडी भी हो सकती है और टमाटर भी हो सकता है, तो भाई सब्जियाँ ये जरूर बताएं। और इसका जो सही जवाब आपको भाई 6:50 से पहले हमारे को भाई SMS या WhatsApp के माध्यम से हमारे फ़ोन नंबर पर देना है। और फ़ोन नंबर तो आपको पता ही है, बता देते फिर भी 9466213364660 3636 पर आपको हमारे को ये सही उत्तर देना है। और भाई 6:50 से पहले SMS या WhatsApp के माध्यम से 9466213336 पर जो भी सही जवाब देगा भाई, उससे प्रगतिशील किसान बहन भाई का भाई हम आपको नाम भी बताएंगे और उसका आभार भी व्यक्त जरूर करेंगे। तो बिना किसी देरी के भाई ये आप सही जवाब दीजिए। और अब जो चर्चा का विषय साथियों हम जो ले रहे हैं, बात करेंगे साथियों किसान

0: सम्मान निधि योजना। बहनों और भाइयों, देखो जो किसान सम्मान निधि योजना है, जैसे कि हम जानते हैं भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना से, जिसके तहत भाई पात्र जो किसान परिवार को 6,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और भाई जो या धनराशि से या 2,000 रुपये की 3 सम्मान निधि के रूप में भाई, या हर 4 महीने के अंतराल पर हमने सीधी किसानों के बैंक खाते में हमने ट्रांसफर जो सरकार करती है भाई मिलती है इसमें। और मुख्य विशेषताओं की बात करें तो भाई इसमें देखो, साल में हमने 6,000 रुपये मिलते हैं, किस्तें हमने ज़रूर बताई, 3 किस्त हर 4 महीने के अंतर पर 2,000 रुपये आते हैं। और भाई पात्रता की हम जब बात करते हैं तो पात्रता भाई वही किसान है जो योजना का लाभ से भी छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को मिलता है, यानी कि जिनके पास भाई खेती योग्य जमीन से, किसान परिवार का अर्थ यानी पति पत्नी और नाबालिग बच्चों से है, और कुछ विशेष ऋणियों की बात करें जैसे संवैधानिक पद वाले आयकरदाता और पेंशन भोगियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। और आवश्यक दस्तावेज की भी बात कर लेते भाई, देखो जो कागज हमने इसमें चाहिए, एक तो हमारे द्वारा भाई आधार कार्ड होना चाहिए जो बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक हो, इसी तरह बैंक खाता का विवरण भी हमारे पास होना चाहिए, पासबुक, भूमि का जो विवरण है जिसने हम खसरा खतौनी भी का दिया करें वह चीज़ जरूर होनी चाहिए, और स्टेटस और ई केवाईसी चेक की बात करें तो भाई योजना का लाभ निर्बाध रूप से हम प्राप्त करने के लिए किसानों को ई केवाईसी का पूरा होना अनिवार्य है। तो साथियों, इसका लाभ हमें ज़रूर लेना चाहिए। जो आपके आसपास जो छोटे किसान हैं, हमें उनको जानकारी देनी चाहिए ताकि भाई वे भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके, क्योंकि देखो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो भाई पूरा हंगा लगा रही है, हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई जो भी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो भाई ये हमने जो चर्चा करी भाई, ये हमने किसान सम्मान निधि योजना की बात करी थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बाद बात कर लेते साथियों अन्य जानकारियाँ की। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले हम बता देते भाई मौसम की जो जानकारी है, आज का अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और आने वाले 24 घंटे की भी बात हम जरूर कर लेते हैं। अधिकतम 39 और न्यूनतम की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसी तरह साथियों, हम जो अन्य कार्यक्रमों की बातचीत करें तो भाई कल के कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको जरूर दे देते हैं। और भाई कल है रविवार और कार्यक्रम हमारा जो रहता था थारी चिट्ठी मारे गीत, नाम जरूर परिवर्तन कर दिया है समय के अनुसार, भाई कार्यक्रम हो गया है थारे संदेश मारे गीत। और आपकी जो चिट्ठी पत्री जो मैसेज के मोबाइल के माध्यम से आते हैं भाई, वो सारे के सारे हम जरूर लेते हैं, मनपसंद के गीत रागणी भजन सारे लेते हैं, तो कार्यक्रम जरूर सुने। और सोमवार को कार्यक्रम अन्नदाता, उसमें हमारा विषय रहेगा भाई, चर्चा रहेगी फसलों में उर्वरकों का समुचित उपयोग, और नई फसल नई उमंग में हम जो विषय लेकर आए सोमवार को, उसमें भाई हम बातचीत करेंगे बासमती धान की सीधी बिजाई। इसके अलावा जो जानकारी प्राकृतिक खेती की भी बात करेंगे, जिसमें कीटनाशक निमास्त्र किस तरह बना हुआ उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। और इसी तरह साथियों, ये तो रही आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, और अब भाई बहनों और भाइयों का मनोरंजन जरूर करवा देते हैं, और उसके बाद भाई चर्चा लेंगे आज की नसीहत में दान की सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण व अन्य देखभाल। तो सुनते हैं ये रागणी कार्यक्रम किसान वाणी में।
1: तो भाई बात कहां से कि एक बार हाँ भाई हरियाणा में ना कुछ बहुत बेडा आ गया, और एक बात के द्वारा आज

कोई कहसे और कोई कहसे लखनी चनके वो गीत पुराने गाजे और कोई कहसे वादी आई वो फिल्मी तरज सुना दे और

तो बहनों और भाइयों, ये आपने रागनी सुनी और मेर सिंह की रागनियों में से हमने इसको लिया था। राजेंद्र खरगिया और साथियों द्वारा ये गाई गई थी। और भाई, रागनी से पहले हमने जो चर्चा करी थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और पत्र जो है भाई, इसमें ज़रूर हमने भाग जरूर लेना चाहिए। जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। और अब बातचीत हम ज़रूर कर लेते हैं आज की नसीहत में। आज की नसीहत में भाई हम बात कर रहे हैं धान की सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण में अन्न देखभाल। और इसकी जब हम बात करते हैं भाई, जिस तरह भाई धान की बुआई की तारीख भाई नज़दीक तो आ रही है और कई जगह तो बोने भी लग गए हैं। और भाई धान की जो सीधी बिजाई है भाई, एक तो भाई इसमें ज़रूर आप ध्यान रखें भाई, खरपतवार रोकनात्मक आसानी के से हम कर सकते, तो बिजाई से पहले खेत को लेजर लेवल से अच्छी तरह भाई समतल जरूर कर ले। और रेतीली मिट्टी वाले जो खेतों में सीधी बिजाई से धान की फसल ना ले, इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और सीधी बिजाई उन्हीं खेतों में करें जड़ा भाई विगत वर्षों में धान की खेती पारंपरिक विधि से की जाती है, तथा जिन खेतों में गन्ना कपास व मक्का की फसल ली जाती है उनमें भाई सीधी बिजाई ना करें, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और धान की बिजाई जून के पहले पखवाड़े में पलेवा के उपयोग गीली बत्तर अवस्था में करें। और बिजाई के लिए भाई केवल कम अवधि में पकने वाली किस्मों का ही हमें चयन करना चाहिए। और बिजाई से पूर्व बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोवें और बाद में छाया में सुखाकर वह बीज उपचार के बाद इसकी बुआई करें। और बुआई सुबह या शाम के टाइम की जानी चाहिए और तुरंत बाद खरपतवार नाशक का छिड़काव इसमें करें। और जड़ तक संभव हो धान की जो सीधी बिजाई भाई, इसमें सीड ड्रिल के माध्यम से करनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार का छिड़काव भी इसमें साथ साथ इसमें करती है। तो पहली सिंचाई बिजाई के लगभग भाई 21 दिन के बाद लगावे और लेजर लेवल से समतल करने के कारण जो फसल एक सार होती है, रेतीली ज़मीन में सीधी बिजाई से कम पैदावार आएगी और पानी अधिक लगाने के कारण भाई खरपतवार की समस्या और भी बढ़ेगी। तो पिछले वर्ष जो धान वाले जो खेतों में सिर्फ धान के खरपतवार आएंगे, जबकि गन्ने कपास व मक्के के खेतों में भाई जो अलग अलग तरह के खरपतवारों का प्रकोप भी इसमें बढ़ेगा, जैसे कि इसमें गुड़ में दाना चीनी घास व तांतला आदि, तो जिनकी रोकथाम के लिए भाई अधिक स्प्रे करने पड़ते हैं। तो भाई सीधी बिजाई आप तो जो करते हो खरपतवारों की रोकथाम तो ज़रूर इसमें हमने आपको ज़रूर बताई। और खरपतवार का जो प्रयोग है बिजाई के समय वह बाद में किया जाना चाहिए, बिजाई के तुरंत बाद बत्तर खेत में और सूखे खेत में बिजाई के बाद पैरना चाले और 1.3 लीटर प्रति एकड़

स्टॉप 200 लीटर पानी में घोल के फ्लैट फैन या फिर फ्लड जैसे नोजल द्वारा इसमें किया जाना चाहिए। और खरपतवार नाशक जो घास जाति वाले जो खरपतवार जैसे कि सावन में दाना चीनी घास लकड़ी व घास मकड़ा और कुछ चौड़ी पत्ती वाले जो घास को भी उगने से रोकता है, तो खड़ी फसल में खरपतवार जब 3 से 4 पत्ती की हो तो खरपतवार नाशक का प्रयोग इसमें करें। तो साथियों ये तो जानकारी दी हमने घास की सीधी बिजाई व खरपतवार रोकी रोकथाम के बारे में, और अन्य जानकारी भी हम आपको ज़रूर दे देते हैं। और भाई इसमें हम जो सीधी बात कर लेते साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। और इसके अलावा साथियों आप अपने पशुधन का भी ध्यान जरूर रखें। और अब बातचीत अन्य जरूर कर लेते हैं भाई, अन्य विषय हम जरूर ले लेते हैं। और इसमें बात करेंगे भाई अतिरिक्त आय के रूप में बागवानी का किसानों के लिए महत्व के बारे में, क्योंकि देखो किसानों की जो आय है वो दोगुना करने तय भाई कृषि को लाभदायक बनाने के लिए भाई बागवानी एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और उभरता हुआ विकल्प है। पारंपरिक फसलों जिस तरह भाई धान की बात करें गेहूं की बात करें उसकी तुलना में फल है जो सब्जी है फूलों मसालों और औषधि पौधों की जो खेती से किसान काफ़ी अधिक और निरंतर आय प्राप्त इसमें कर रहा है। तो अधिक मुनाफा कमाने में या फिर आय का निरंतर साधन की बात करें से फसली खेती की बात करें तो भाई इसमें हमने लाभ जरूर होता है, क्योंकि देखो पारंपरिक जो खेती है धान गेहूं की तुलना में अगर जो आज हम सब्जियों की करते फूलों की मसालों की औषधि पौधों की करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को लाभ मिलता है। तो अधिक मुनाफे की जब हम बात करते हैं तो बागवानी फसलों का जो बाज़ार है वो भाई मूल्य पारंपरिक फसलों की तुलना में भाई काफ़ी अधिक होता है। और किसान एक छोटे से भूखंड यानी कि थोड़ी सी ज़मीन पर भी फलों और सब्जियों की खेती करके सामान्य अनाज के मुकाबले में कई गुना अधिक ज़्यादा मुनाफा कमाता है। इसी तरह आय का नियंत्रण साधन की बात करें तो पारंपरिक फसलों में भाई किसानों को साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही आमदनी होती है। इसके अलावा बागवानी की जब हम बात करते हो भाई अलग अलग टाइम पर फसलें पकती है, जिस तरह किसानों को साल भर थोड़ी थोड़ी अवधि के अंतराल पर लगातार उसमें भाई उनको नकद आय प्राप्त होती रहती है। इसी तरह सह फसली खेती की जब हम बात करते हैं तो भाई इसमें बड़े फलदार जो पेड़ है जैसे आम है अमरूद है नींबू है उसको लगाने के बाद जो शुरुआती कुछ सालों तक पेड़ छोटे होते हैं, इस दौरान किसान पेड़ों के बीच की खाली जगह पर भी सब्जियां अदरक या फिर हल्दी जैसी फसलों को आसानी से उगा कर सकते हैं। और इससे मुख्य फसल तैयार होने पर के अलावा इसमें आय इसमें ज़रूर मिलती है। और खराब भूमि का जो सही उपयोग की हम बात करें तो भाई सभी बागवानी फसलें जो उपजाऊ मैदानों तक सीमित नहीं है, बंजर रेतीली सूखी या पहाड़ी जमीन जरा पारंपरिक खेती करना मुश्किल है, वहाँ पर भी कुछ विशेष फल जैसे बेर की बात कर ले हो अनार है आंवला है और औषधि पौधे उगाकर किसान भाई अपनी अनुपयोगी भूमि से भी कमाई इसमें कर सकता है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ की बात करें तो भाई बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भाई केंद्र और राज्य सरकार भारी मात्रा में वित्तीय सहायता भी और भाई सब्सिडी भी प्रदान करती है। अगर जो हम उदाहरण के तौर पर देखो भाई हरियाणा सरकार बागवानी करने पर प्रति एकड़ 1.40 लाख तक का अनुदान सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा भाई केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को भाई बीज और नकदी सहायता भी इसमें दी जाती है। और इसके अलावा भाई जो बेनिफिट की बात करें तो भाई देखो रोजगार के अवसर तो है ही बागवानी में, भाई खेती से लेकर तोड़ाई है पैकेजिंग है प्रसंस्करण है उत्पादन बनाने तक का भाई जो भी काम इसमें शामिल है इसमें किसानों के परिवार के साथ साथ भाई गांव के अन्य मजदूरों को भी साल भर इसमें रोजगार मिलता है। तो साथियों बागवानी महत्वपूर्ण साधन है और समय के अनुसार हमें भी अपडेट होकर जरूर चलना चाहिए। और जो पारंपरिक फसलें है जो धान है गेहूं है या अन्य फसलें की बात करें तो साथियों अगर जो बागवानी की तरफ हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई रुख भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और टाइम टाइम पर उनको आय भी अतिरिक्त मिलती रहेगी। और डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है भाई शहरों की तरफ भी बात करें तो भाई आप अगर जो अच्छे फल सब्जियाँ उगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने जो आए आप चाहते हो वो ज़रूर मिलती है। बात अब कर लेते साथियों इसमें अन्य जानकारी PIB ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सारी जानकारियाँ इसमें ले सकते हैं। और इसके अलावा साथियों जो किसान कॉल सेंटर का नंबर भी आपको ज़रूर बता देते हैं 1551 घर बैठे आप सारी जानकारी

0: सक्रिय समय ले सकते हैं। और इसके अलावा साथियों, जो आज का हमने कृषि प्रश्न आपसे शुरुआत में पूछा था कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है, भाई देखो पूरे हरियाणा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आलू उगाया जाता है, तो आलू की जो सब्जी है वो सबसे ज़्यादा भाई इसमें खेती की जाती है पूरे प्रदेश के अंदर। अन्य फसलें भी है, सब्जियां भी है, लेकिन साथियों आलू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो सही उत्तर आलू है, और इसका जो सही उत्तर हमारे को दिया है भाई सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र से भाई पारस, बीना, बबीता और भारत ने ये सही जवाब दिया। इसी तरह भाई सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र से ये सही जवाब आए भाई मनोज, रेखा, निधि, निशा और धर्मपाल, मूर्ति देवी परिवार के सभी सदस्य। और भाई जो सही जवाब भाई यमुनानगर से भी हमारे पास से सही जवाब आया, रणधीर सिंह बांगड़, बेजो देवी और परिवार के सभी सदस्य। रोहतक से भी हम इस जवाब को जरूर लेते हैं, प्रोफेसर जयसिंह कनगवाल और परिवार के सभी सदस्य। और इसी तरह भाई संजीव कुमार, अमन कुमार भाई ये कुकानी, इंद्री करनाल से भी सही जवाब हमारे को भाई ने दिया है। और इसके अलावा साथियों हम जो बातचीत हमारे पास जो मैसेज भी ज़रूर आ रहे हैं, मैसेज को भी हमने ज़रूर लिया है। और ये भाई अम्बाड़ा से मनोज सबरवाल और परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने भी सही जवाब दिया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते साथियों आप आगे ही ऐसे भाग जरूर लेते रहेंगे, और आज हमने जो जानकारी दी भाई एक कोशिश ज़रूर करें कि भाई जो भी जानकारी है वो अपने सहायक जो किसान साथी उनको आप ज़रूर दें। और कार्यक्रम से आप हमारे साथ लगातार बने रहे, तो साथियों आजकल जिस तरह डिजिटलाइजेशन है तो आप भी डिजिटल हैं, तो मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें प्ले स्टोर के माध्यम से भी आप हमारे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उस पर आजकल विभिन्न तरह की भाई रेडियो ऐप है जिससे आप हमारे से लाइव जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से जैसे डाउनलोड करते हैं न्यूज़ ऑन AIR, तो उस पर जो कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो लाइव जो भी हमारे कार्य में आप हमारे से सीधे जुड़ जाएंगे। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल भी है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं हम उनको अपलोड करते हैं और आप कितनी भी बार उनको सुन सकते हैं। तो साथियों ये जानकारियाँ हमने ज़रूर दी, और अन्य जानकारी भी आपको ज़रूर दे देते हैं साथियों, पशुधन की भी। गर्मी काफ़ी हो गई है तो गर्मियों में आप अपने पशुधन का भी ज़रूर ध्यान रखें, और सुबह शाम जिस तरह भाई गर्मी सुबह शाम भी लग रही है तो विशेष तौर पर उनकी व्यवस्था अच्छी प्रकार से करें, और जो जाले जिस तरह हम खिड़कियां हैं उनका भी आप बोरी ज़रूर लगाएं, और गिल्ली भाई पानी वगैरह गिरे, और पशुओं को समय पर पानी भी पिलाएं, और जब भी आप घुमाने ले जाते हैं तो साथियों घर से ही अपने पशु को पानी पिलाकर ले जाएं, क्योंकि जब वो तालाबों में जाते हैं तो साथियों उधर पानी पीते तो अन्य जो कीटाणु वो भी उनके पेट के में चले जाते हैं। तो कोशिश जरूर करें भाई अपने जो पशुधन को आप हमेशा पानी पिला के जाए और उनका व्यवस्था का ध्यान रखें। और अब ये संदेश,
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे,
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तो बहनों भाइयों, आज के कार्यक्रम किसानवाणी में इतना ही, और अपने साथी विनोद मरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। अब कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम संसार और समय ठीक 7 बज गए हैं। सुनते हैं ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मरवाल की राम राम। और साथियों, कार्यक्रम ग्राम संसार हमारा जो कार्यक्रम है गांव गुआंढ की बात, जिस तरह गांव नाम से ही पता भाई, ग्राम संसार यानी कि गांव गुआंढ की लोक संस्कृति की हमारी वो सारी बातचीत है जिस तरह हम अपने प्रदेश को देश को आगे हमेशा बढ़ा सके। और आज की जो परिवेश के अंदर अपडेट हम किस प्रकार से रहे वो तमाम बातें हम सभी करते हैं ताकि हमारी जो लोक संस्कृति है वे बनी रहे और जिस प्रकार से हम उनको निभा रहे हमारी आने वाली जनरेशन हमारी पीढ़ी भी उसको बखूबी अच्छी तरह निभाए। तो भाई आज कार्यक्रम ग्राम संसार में हम जो विषय लेकर आए हैं आधुनिक समाज में संयुक्त परिवार का महत्व। और भाई जब संयुक्त परिवारों की बात करते हैं भाई, एक टाइम ऐसा था भाई जब बड़े परिवारों के अंदर हम जो देखते थे भाई, पहले बड़े परिवारों की ज़्यादा ही महत्व रहता था। और जब ब्याह शादी की बात होती थी तो साथियों हम अपने बेटी को या बेटे को ऐसे परिवार में हम शादी करते हैं जहाँ पर भाई बड़ा कुनबा होता है, क्योंकि बड़ा जो कुनबा होता है हमारी कोशिश यही थी, हमारी सोच यही थी भाई अगर जो काका ताऊ चाचा ताऊ हो गए तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और वो सारे के सारे मिलकर सेफ गार्ड की तरह हमारे बच्चों की परवरिश को बेहतर बनाएंगे। लेकिन आज परिवेश जरूर चेंज हो गया तो लेकिन संयुक्त परिवारों का बड़े परिवार को का महत्व आज भी है। आज परिवार का अर्थ केवल भाई पति पत्नी और बच्चे तक सीमित है और संयुक्त और बड़ा परिवार अब खत्म से हो गया, जबकि बड़ा परिवार भाई एक वट वृक्ष की तरिया होया करे जो मनुष्य के जीवन में आने वाले जो आंधी तूफान में डटकर खड़ा रहता है। छोटे और एकल परिवार जरा सी भी मुश्किल घड़ी में भाई घबरा कर अक्सर आत्मघातक कदम उठा लेते हैं। बड़ा परिवार व्यक्ति को न केवल भाई शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में मदद करता है बल्कि भाई बीमार या तनाव की स्थिति में भी अपनी प्रेरणा और देखभाल से एक बार फिर उसे भाई चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार करता है। और चाहे किसी भी तरह की भाई मुसीबत क्यों ना हो वो उसको डटकर सामना करवाने में उसकी मदद करता है। उसकी खुशी परिवार में आने से ही बनती। तो आदमी के वर्तमान और भविष्य का जो ढांचा भाई परिवार की मजबूत नींव पर ही टिका होता है। अगर आदमी परिवार में भावनात्मक रूप से भाई जुड़ा हो तो अपनी लड़ाई कम होती है, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए भाई चाहे पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो लेकिन भाई जो असली जरूरत एक भरा पूरा परिवार घर परिवार ही कर सकता है। यदि अपने बच्चों को भाई आदर्श बनाना चाहते हैं तो उनके अंदर बड़े परिवार के साथ जोड़िए, बच्चा उनके बीच रहकर बस स्वयं संस्कार और सद्गुण सीख जाएगा। तो साथियों बड़े परिवारों का काफ़ी महत्व है, संयुक्त परिवार का भी है। पहले हम ये देखते थे भाई बड़ा परिवार है भाई इसमें चाचा तब हो गए और हर एक चीज़ का देखभाल रखा गई, लेकिन आज के परिवेश के अंदर हम देखे तो ज़्यादातर हम ये चीज़ देखते हैं भाई जड़ा सासू भी नहीं हो, ससुर भी नहीं हो और भाई कोई भी नहीं हो ताकि एक आज़ादी हो। लेकिन साथियों ये जो आज़ादी कई बार हमारे को हर चीज़ से पीड़ा भी देती है, अलग भी कर देती है। शुरुआत में अच्छी लगती है लेकिन जब जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर तो साथियों हमें समझ में आता है कि परिवार क्या चीज़ है। तो भाई परिवार बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज का और समाज का ताना बाना परिवार से ही बनता है। तो कोशिश जरूर करेंगे संयुक्त परिवार और बड़े परिवारों का महत्व आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। और अब ये संदेश और संदेश के बाद भाई ये लोकगीत सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार में।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर

0: कीजिए। आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
3: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
2: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
3: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
3: 8708903436।
4: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए और प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
5: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
4: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
5: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।

0: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: साथियों, ये आपने फिल्म गुलाबों से इस गीत को सुना, और वास्तव में देखो जो जिस प्रकार के जो सीख इस गीत के माध्यम से दी गई, भाई हमारी चाची ताई परिवार के अंदर भाई इस प्रकार की सीख हमेशा अपने बच्चों को जरूर देते हैं। भाई किस प्रकार से अपने भाई जिधर आपकी शादी हो रही है तो उसमें परिवार का सम्मान मान कैसे बढ़ाना है, और हम बढ़ाते भी है, और कोशिश जरूर रहती है कि भाई किसी भी काम की कोई भी शिकायत नहीं दी जावे, और जो भी संस्कार है वे जरूर हम उनको पूरा करते हैं। और आजकल भाई जिस तरह बात करें, भाई देखो सामान बयान हो रहा है तो कोथले की भी बात करते हैं, तो एक लाड़ प्यार का वो एक बंधन है, और इसमें भाई परिवार जब आते जाते हैं तो उस पर सम्मान भी बढ़ता है। और आज साथियों बात हम कर रहे हैं संयुक्त और बड़े परिवारों की, क्योंकि ये विषय ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें भाई सभी के सभी भाई बातचीत बहुत जरूरी, क्योंकि आज हम सभी परिवारों से हमेशा बंधे हुए हैं, और अपने जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथियों परिवार का भी हमें ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और आधुनिक समाज में संयुक्त परिवार के महत्व की जब हम बात करते हैं तो साथियों आज स्टूडियो में हमारे साथी भी आए हुए हैं, तो उनसे भी बात कराते हैं। और हमारे साथ भाई संजय तंवर, भाई मनजीत सिंह, सविंदर शर्मा, हरदीप भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत भाई संजय तंवर से कर लेते। भाई संजय भाई, परिवार की हम जब बात करते तो भाई आज क्या कारण मानते हो कि संयुक्त परिवार भाई आज खत्म होते जा रहे हैं?
3: विनोद भाई जी, सभी किसान भाइयों की तरफ से राम राम। और सबसे बड़ा कारण तो मुझे जो आजकल लग रहा है ये परिवार, संयुक्त परिवार टूटने का, तो कहीं ना कहीं रोजगार जरूर है इसमें, क्योंकि रोजगार की तलाश में इंसान अपने घर से कई बार दूर चला जाता है, और एक परिवार का एक हिस्सा गांव में है और एक हिस्सा क्या पता किसी दूसरे शहर में या महानगर में है, या फिर हो सकता है कि विदेश में भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण मुझे ये
2: तो लगा कि आपको रोजगार का लगता है,
3: रोजगार का लगता है।
2: तो भाई मंजीत भाई से भी पूछ रहे थे, भाई मंजीत भाई आपने क्या लगता है कि भाई जो संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे है, और इसमें आप क्या चाहते हो, किस तरह बताओगे इसमें?
4: भाई विनोद भाई, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, जो संयुक्त परिवार टूटे हैं ना उसका मेन कारण तो ये है कि अपन ने बड़े बुढ़िया के साथ बैठना छोड़ दिया।
2: अच्छा,
4: और
2: हमारे जो संस्कार आने चाहिए थे वो नहीं आते।
4: हाँ, वो नहीं आते। और एक दूसरा कारण ये भी है कि हम आजादी चाह हर एक चीज तक। अच्छा। कदे मैं मेरी माँ टोक दे, कदे मेरा बाप टोक दे, मेरा दादा टोक दे, तो उस चक्कर से भी मतलब परिवार थोड़े टूटने लगे, जिसका मेन कारण यही है।
2: और सविंदर भाई आप भी थोड़ा सा बता दो किस प्रकार से भाई ये जो आज परिवार हम देखते हैं, भाई केवल पति पत्नी और बच्चों का ही परिवार रहा है, चाचा ताऊ तो आजकल परिवार मानते को नहीं।
5: विनोद भाई, बिल्कुल आपने ये बात बहुत सही कही, और जो आजकल संयुक्त परिवार जो टूटते जा रहे हैं और एकल परिवार बन रहे हैं, इनमें एक जो आजादी चाव है आजकल के नव युवक,
2: अच्छा,
5: चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, शादीशुदा हो या कुमारे हो, वो किसी के भी नीचे काम करना नहीं चाहते।
2: अच्छा, दखलंदाजी नहीं चाहते,
5: दखलंदाजी चाहते,
2: आजादी चाहो।
5: वो ये सोचा कि हमें कोई रोक टोक की ना करे, हम अपने मन मर्जी से काम करें।
2: अच्छा।
5: जैसे ही शादी हो गया, शादी के तुरंत बाद हर लड़का या लड़की वो ये चाहो है कि हम अपनी मर्जी से अपना जीवन जीवे।
2: देखो जीवन। हर तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ज्यादातर इस्तेमाल कर सकते हो। देखो आज ऐसे भी भाई लड़के लड़की है जो अपने माँ बाप का भाई पूरा सम्मान भी करते हैं, साथ में भी रखते हैं, उनकी अहमियत को भी समझते हैं। तो आपने मेन तो आजादी की बात बताई, और हरदीप भाई आप भी थोड़ा सा बताओ कि किस प्रकार से भाई जो संयुक्त परिवार अलग हो रही है, भाई क्या कारण मानते हो आज?
6: विनोद भाई राम राम, अरे किसान भाई है ना भी राम राम। मेरी आजकल सबसे बड़ा कारण है सहनशीलता।
2: अच्छा।
6: सहनशीलता तो देखी आदमिया में रही नहीं है, बात बात पर छो हो जाए है, फिर बात छोटी तब बड़ी बच जा है, है। और आज का लेख शब्द मैं आ रहा पहले कहा करते भाई मारा घर है ये, भला मेरी गाड़ी मेरा कमरा यो मैं सब दिस आ रहा है, जिस तक परिवार टूट दे जान ना करे।
2: अच्छा
6: जी,
2: तो ये भी आपने सही बात कही हरदीप भाई, क्योंकि है ना सहन शक्ति हमारे अंदर बहुत जरूरी है, और जब हम सहन शक्ति की बात करते

भाई देखो, 6 से 14 वर्ष की जो उम्र होती है, जो बच्चे जब ग्रोथ करते हैं, तो उस दौरान साथियों सहन शक्ति का समय होता है भाई। उनके अंदर सहन शक्ति पैदा होना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि साथियों अगर जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की जो उम्र है, बच्चों को आप जैसा रूप देते हो, जैसी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी हो, जैसा आप रूप दोगे तो वैसा ही हो जाता है। तो कोशिश जरूर करें भाई, बच्चों को आप काम भी बताएं, उनको जोड़े भी भाई। अगर जो घर पर है, ऐसा नहीं भाई बैठ भाई सब कुछ उस्ता दे दे भाई, तो बच्चों को आप जरूर बताए भाई। देख हम भी भाई जब छोटे थे भाई, तेरा दादा नुका करता भाई, इतनी दूर तक रोटे बांध के लाया करते, ठीक है, और भाई इतनी दूर तक पानी लाया करते, जब तक तो सुविधा नहीं थी। तो वो एक जो ऐसा है जो रियलाइज, उसको अब आस करवाना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से संघर्ष कर करना है भाई। यहाँ पर गाड़ी खींची है और बच्चों से हमें बातचीत करनी चाहिए, उनको सहन शक्ति उनके अंदर आए तो ये भी कोशिश करनी चाहिए। और भाई देखो, जो अध्यापक है, कारण सहन शक्ति कम होने का यह भी है क्योंकि टीचरों से हमने भाई छड़ी उनसे छीन ली है भाई। पहले चाचा ताऊ भी धमका दिया करते गलत बात पे, लेकिन आज यदि भाई अगर जो परिवार से कोई डांट भी देता है, उसके भले के लिए कह भी दे, तो भाई उसका भी हम बुरा मानते हैं और हम बच्चों का पक्ष ले लेते हैं। हालांकि हमें यह समझना चाहिए भाई, हमारे जो परिवार के सदस्य है, चाचा ताऊ है या बड़े बुजुर्ग है भाई, वे कुछ ना कुछ प्यार करते हैं, सम्मान चाहते हैं। वे भी ये चाहते हैं कि भाई ये भाई परिवार का नाम रोशन करे, गांव गुआंढ का नाम रोशन करे, इसलिए उसको डांटते भी है, कहते भी भाई ये चीज गलत है, क्योंकि वे अपने अनुभव के बदौलत भाई वे उनको बताते भाई ऐसा ना करे, अन्यथा भाई यह चीज हो जाएगी। तो भाई इस बात को भी आप जरूर समझे कि परिवार के अंदर भाई जो थोड़ी बहुत डांट भी बहुत जरूरी है, बच्चों को बताना भी जरूरी है, क्योंकि वो जो उनका मन होता है उस दौरान बच्चों का भाई, वो उस बात को परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं हो पाता, समझ नहीं पाता। तो भाई कोशिश जरूर करे कि भाई परिवारों के अंदर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझे। पहले भाई इकट्ठे बैठते थे भाई, चूल्हे के आगे सारे इकट्ठे रोटी खा करते, पूरे दिनचर्या को हम जरूर आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आज यदि हम देखा है तो भाई अपने अपने न्यारे न्यारे कमरा में रोटी खाते हैं। हम परिवारों के अंदर बैठ कर बातचीत भी नहीं करते कि भाई किस प्रकार से भाई दिनचर्या रही, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो कोशिश जरूर करें भाई अपने बच्चों के अंदर परिवर्तन भी लाए, स्वयं में भी परिवर्तन लाए, साथ के साथ ये भी आप जरूर कोशिश करें भाई, होली दिवाली पर गांव गुआंढ में आप जरूर उनको घुमावें, ताकि उस परिवेश को उसे को वो आभास उनको हो और वो अच्छे प्रकार से सीख पाए कि किस किन संघर्षों से भाई हमारा परिवार यहाँ तक पहुंचा है। तो भाई कोशिश जरूर करें, जो संयुक्त परिवार है उसके अंदर सहन शक्ति जरूर होनी चाहिए भाई। पहले तो देखो जो बड़े परिवार होते थे भाई, पति पत्नी के अंदर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता था भाई, तो भाई सासू जो होती थी भाई, वह अपनी बहू ने भी कह दिया करती, बेटे तभी दो बात कह दिया करते, तो दोनों के झगड़े को वो समाप्त करवा दिया करती। लेकिन अगर जो परिवार के अंदर कोई नहीं है, केवल पति पत्नी है और छोटे बच्चे हैं, तो भाई कौन किसको समझाएगा। तो कोशिश जरूर करें भाई, बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, आप उनको पूरा सम्मान दीजिए, आना जाना जरूर रखिए, ताकि हमारे संयुक्त परिवार बने रहे। तो सुनते भाई ये लोकगीत और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार में।

तो साथियों बातचीत हम जरूर महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं भाई, सूक्ष्म लघु सूक्ष्म दिवस की एमएसएमई की बात कर लेते हैं, क्योंकि साथियों एमएसएमई दिवस 27 जून 2017 को मनाया जाता है और भाई 27 जून 2024 को विश्व एमएसएमई दिवस 24 के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएस में कार्यक्रम भी होता है। और भाई कार्यक्रम की खासियत यही रहती है कि भाई एमएसएमई दिवस ये बता भाई जो छोटे लघु उद्योग है उनको भाई जीवित करना, उसके माध्यम से समाज में भाई रोजगार को आगे बढ़ाना। तो साथियों ये बातचीत जरूर है कि छोटे जो लघु उद्योग है वे भाई किसी भी देश की आत्म शक्ति होती है, तो उसको हमें जरूर बढ़ाना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, ताकि साथियों हम हमेशा आगे बढ़ सके, समाज में एक सभी को रोजगार दे सके। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7:30 होते हैं। अब सैनिक भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी सैनिक भाइयों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आप सभी का कार्यक्रम जय जवान में स्वागत है और आपके मनोरंजन हेतु कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको मनोरंजन की दुनिया में, सुनवाते हैं कुछ सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नजर हम कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है गीता मेरा नाम।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एचआईवी और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, एचआईवी और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में एचआईवी और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी आईसीटीसी केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम जय जवान में लीजिए अब सुनिए आपकी कसम फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।
8: अभी तो नहीं।

कार्यक्रम जय जवान में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में नागिन फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओ, शाम के 7:45 होते हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गजल सम्राट गुलाम अली की गाई कुछ सदाबहार गजलें। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी दोस्तों का एक बार फिर से हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और गुलाम अली की जो पहली गजल हमने ली है, वो ली है एल्बम तेरे शहर में से।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम गुलदस्ता में आज आप सुन रहे हैं गुलाम अली की गाई कुछ सदाबहार गजलें। एल्बम है तेरे शहर में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे गुलाम अली की गाई कुछ सदाबहार गजलों का। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओ, रात्रि के 8 बजने को हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

0: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अपने दोस्त नवीन के साथ। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आइए सुनते हैं। पहला कार्यक्रम का गीत आपने सुना था, फिल्म थे खामोशी द म्यूजिकल, उसके उनके साथ आवाजें थी कुमार सानू की। और लीजिए अब सुनिए 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है।

एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8:15 होते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा। निर्देशन विनेश्री, तकनीकी सहयोग राजेंद्र कुमार, स्वर अनुराधा और प्रस्तुति महेंद्र मोहन शर्मा की है।

आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आपको भारत की एक दिलचस्प यात्रा पर लेके जा रहा है। हमारा भारत एक ऐसी धरती है जहाँ कई भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं एक स्वर में मौजूद हैं। भारत एक देश ही नहीं बल्कि सभ्यताओं की एक जीवंत तस्वीर है और भारत की विभिन्नता में एकता इस तस्वीर में अपने शानदार रंग भरती है। भारत का हर कोना एक अलग कहानी बताता है, फिर भी सारी

0: कहानियाँ अनेकता में एकता के सांझे धागे में पिरोई हैं। आओ विलक्षणता की इस सांझी विरासत में गोता लगाएं और आनंद मनाएं, जो हमें भारतीय होने की पहचान दिलाता है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा के तहत
1: तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत में स्थित एक राज्य है जिसे 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण राज्य भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रायपुर राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास प्राचीन और समृद्ध है, जिसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में दक्षिण कौशल के रूप में मिलता है। मौर्य, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, शरभपुरी, कलचुरी और मराठा जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। पौराणिक काल में कौशल प्रदेश, कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के दो भागों में विभक्त हो गया था। इसी का दक्षिण कौशल वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस क्षेत्र की महानदी, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भी आता है, महाभारत के भीष्म पर्व और ब्रह्म पुराण के भारत वर्ष में भी इसका वर्णन आता है। वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। यहाँ स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया था, जिससे तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर आगमन हुआ। राम के काल में यहाँ के वनों में ऋषि, मुनि, तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में श्री राम भी यहाँ आए थे। इतिहास में इसके प्राचीनतम उल्लेख सन 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग की यात्रा का विवरण मिलता है। उनकी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम सिरपुर में

की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 135,191 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 44% से अधिक हिस्सा घने जंगलों से आच्छादित है, जो इसे भारत के सबसे हरे भरे राज्यों में से एक बनाता है। महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ और हसदेव जैसी नदियाँ राज्य की कृषि और जल संसाधनों का आधार हैं। उत्तर में सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिण में बस्तर का पठार और मध्य में उपजाऊ मैदान इसकी भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और चित्रकोट जलप्रपात जैसे स्थान अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जहां लगभग एक तिहाई जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, जिसे जनजातियों का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यहां 42 से अधिक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और जीवन शैली है, जिनमें गोंड, बैगा, कंवर, उराव, हलबा, कमार और बिहोर जनजातियां प्रमुख हैं। गोंड छत्तीसगढ़ की बड़ी और प्रमुख जनजाति है।

0: ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੋ ਚਲ ਲਿਓ ਰੰਧਾਏ ਜਾਤੇ ਰਾਜ ਰੰਧਾਏ ਲਿਓ ਰੋਇਲ ਮਟਕੋ
1: छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति विविधता और अनेक रंगों से भरी हुई है। यहाँ के जनजातीय समाज ने अपनी पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य को संरक्षित किया है, जो आज भी इस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए हुए हैं। पंडवानी, जो महाभारत की कहानियों का गायन है और यहाँ की प्रमुख लोक संगीत विधा है। इसके अलावा सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य,

और राउत नाचा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, जो विभिन्न त्योहारों और विशेष अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। बस्तर की जनजातीय कला और शिल्प जैसे गोंडी पेंटिंग्स, ढोकरा कला जिसमें धातु की मूर्तियों को परंपरागत कला और बेल मेटल शिल्प राज्य की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा

0: छत्तीसगढ़ की भाषा की बात करें तो राज्य की आधिकारिक भाषा छत्तीसगढ़ी है, जो कि हिंदी से मिलती जुलती है। इसके अलावा राज्य में गोंडी, हल्बी, कुड़ुक जैसी जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ के लोक संगीत की बात करें तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गीत और नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ के लोक गीतों में विविधता है। गीत आकार में अमूमन छोटे और गई होते हैं। लोक गीतों का प्राण तत्व है भाव प्रवणता। छत्तीसगढ़ के प्रमुख और लोकप्रिय गीतों में से भोजली, जस गीत, भरथरी लोक गाथा, बांस गीत, गौरा गौरी गीत, सुआ गीत, देवार गीत, कर्मा, ददरिया, डंडा, फाग, चनौनी, राउत गीत, पंथी गीत और पंडवानी गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। पंडवानी गायकी ने तो विश्व स्तर पर अपना नाम बनाया है।
1: बाजो भाई पांडो और देवी द्रौपदी के साथ में बड़ा प्रेम के साथ जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत नदी नाला पार कर तबे वह समय पहुंच गए व्यास नारायण। व्यास नारायण ले आवे देखी तो पांचो भाई और द्रौपदी सहित ने बड़ा प्यार के साथ स्वागत करे। पिताजी आइए आइए आइए, भरे जंगल में सब हम दुख के और कष्ट में दिल ला बितावत हन कहे।

0: से। अरे ये गुप्त बनवासला तुमन के गुजारा कहाँ चलही, सिर्फ यही बताए बराए हो। तो बोले कहाँ जाए, अरे नगर वीरा चले जल्दी चले जाओ, देरी मत लगाओ, नगर विराट में जाके अपन अपन नाम ले छुपा के। ये नाम छुपाए के बाद सुनने वाले धर्मराज के है, पिताजी आप तो व्यास जी हो।
1: अगर नृत्य की बात करें तो सुआ, कर्मा, डंडा और पंथी गीत प्रमुख लोक नृत्य हैं।

कृषि की बात करें तो छत्तीसगढ़ अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है और इसे देश का धान का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग कृषि योग्य है। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो खरीफ की फसल में धान और रबी की फसल में गेहूं, दलहन, तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। धान के अलावा मक्का, कोदो, कुटकी, दलहन, जिनमें अरहर, उड़द और चना। तिलहन की बात करें तो सरसों, सोयाबीन और मूंगफली और इसके साथ गन्ना प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के खान पान की बात करें तो यहाँ के खान पान में चावल और मौसमी हरी सब्जियों की प्रधानता होती है। यहाँ का स्थानीय भोजन पौष्टिक, सादा और स्वादिष्ट होता है, जिसमें मुख्य रूप से चीला, फरा, मुठिया और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ शामिल होती हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों में चीला, जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है, फरा की बात करें तो भाप में पके हुए चावल के पकवान जो दिखने में छोटे रोल की तरह होते हैं, मुठिया की बात करें तो चावल के आटे और मसालों का उपयोग करके बनाया जाने वाला ये एक नमकीन व्यंजन है जिसे भाप में पकाया जाता है। चौसैला, जिसे चावल के आटे को गूंदकर मसाले डालकर बनाए जाने वाली पूरियां हैं, इन्हें चौसैला कहा जाता है।

छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, प्राचीन मंदिरों और अछूते प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात, कवर्धा का भोरमदेव मंदिर, मैनपाट हिल स्टेशन और सिरपुर के ऐतिहासिक स्मारक शामिल हैं। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीने में माना जाता है।

गजब मिठाते रे संगी, मोर छत्तीसगढ़ के बासी, एही हमार बर तीर्थ गंगा, एही हमार बर मथुरा काशी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, और उसके बाद 9:00 अंग्रेजी में समाचार होंगे। 9:15 से आगे आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन पाएंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे।

0: Ci. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective

0: जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत बाय 2047।
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
4: ब्रिटेन के यू

0: के MTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides.

0: 1977-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से। आवाज अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हरचाई का।
1: विविध भारती पर आ रही है साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म ओके जानों से, आवाज ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: नहीं पता जी गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चे के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बुढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। जो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार है पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने

सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी माँ के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं। बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

0: मजा बिछड़ कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी धुन चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म पंतूष में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो

0: लिए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना,
1: तेरे हाथों में है मेरी धोरी दस, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, ओ तेरे हाथों में है मेरी धोरी दस, कच्चे धागे से

0: कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जान जा दिल तोड़ के, ओ रुक जान जा दिल तोड़ के।
1: फिल्म प्यार का मौसम का ये गाना, इसकी धुन भी पंचम को सपने में सूझी थी।

0: और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।
1: यादों

मोहसिन हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून, गुलजार के लिए जो बनाई थी, वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थी। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी

आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।

जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले ना तो संगीतकारों का परिचय था और ना ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो ना जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया,

रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मियां, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

तरह से बोन जोवा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता दोस्तों, रात्रि के ठीक 10 बजते हैं, अब से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को आपके दोस्त नवीन का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रात्रि के ठीक 10 बजते हैं और ये वो समय है जब हम सभी, या यूं कहें कि इंसान, दिन भर की भागम भाग के बाद अपने लिए कुछ सुकून के पल चाहता है और कुछ समय के लिए अपने आप के साथ जुड़ना चाहता है। दिन भर संसार

तो दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने अभिमान फिल्म से ये गीत सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था सचिन देव बर्मन ने, और 1973 में अभिमान फिल्म जब रिलीज हुई आई तो अपने आप में अलग ही प्रकार की एक कथा लेकर सामने आई थी, जिसमें दो व्यक्ति जो कि पति पत्नी होते हैं प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं, प्रतियोगिता का आलम एक दूसरे के रिश्ते के बीच में आड़े आड़ जाता है। और बेहद खूबसूरत फिल्म ये बनी, अभिनय बहुत अच्छा रहा और सब अच्छा, संगीत अच्छे, गीत। तो ये पहला नजराना इसी फिल्म में था आपके लिए, और इस गीत को पसंद करने वाले दोस्त आप सब, आप हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द। राजकुमार पुजारा, अनीता पुजारा, गायत्री पुजारा, साहिल पुजारा और रोहन आप सब हैं शिव कॉलोनी रादौर जिला यमुनानगर हरियाणा से। कस्बा आप हैं अजीत नगर मलोट पंजाब से, छिंदर सिंह छिंदा, सतराम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर। ये हमारे साथी हैं भागलपुर मुंदिकचक से दिलीप कुमार सोनी और इनके परिवार के सदस्यगण, यवतमाल बिहार से, महाराष्ट्र से माफ कीजिए, संतोष खड़से और विनोद खड़से, मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, दादरी गेट भिवानी से आप हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल। ये हमारे साथी हैं किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा, जुबैर, अंजुम खान और बहुत से दोस्त। ये हमारे साथी हैं लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, शुभदीप, गुरलाल और अविराज सिंह, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा आप हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। ये हमारे साथी हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्कीन, अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का, विनोदपुरी, वीपी रांजनू, अशोक, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और इनके कुछ दोस्त। ये हमारे साथी हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी आप सब हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, और चकला बाजार समाना शहर पंजाब से आप हैं संगीता रानी, जिंदल, पप्पू महक, सुनीता, आरजू, हसमुखलाल, बुलबुल, संजीव और परिवार के सदस्यगण। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम चांदनी रातें में अगली फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। आइए आनंद लेते हैं पहले इस गीत का और पसंद करने वाले दोस्तों के नाम गीत के बाद।

0: तो दोस्तों, कार्यक्रम का दूसरा गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रास फिल्म का ये नगमा शमीम जयपुरी साहब का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया। राजेश खन्ना और बबीता अभिनीत ये फिल्म, बेहद खूबसूरत गीत आप सभी ने सुना और इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम इस प्रकार से हैं। गांव मुरादगढ़ करनाल से रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी वंश और भुवेश काम्बोज, ये हमारे साथी हैं इसी गीत को पसंद करने के लिए। गौतम साहब का ये संदेश है, लेकिन इनका शहर या किसी तरह का कोई पता इस संदेश में नहीं है, तो कृपया अपने शहर का नाम जरूर लिखें। अगला हमारा जो संदेश हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में, वो है गांव महसवाड़ी मलकापुर तहसील महाराष्ट्र से, और संदेश भेजने वाले दोस्त हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निंजा जी धाड़े और स्वप्निल धाड़े, ये हमारे साथी हैं। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार ढाबी, भूपत कुमार ढाबी, राधा तवर, विक्रम अर्चना, साक्षी ढाबी, गांव टुंकिया जिला बालोत्रा राजस्थान से। और अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का था, कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से आप हैं आसिफ अली खान, शरीक अली खान और सादिक अली खान, ये हमारे साथी हैं। सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि कृष्णा घोड़के पंढरपुर शहर महाराष्ट्र से, और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का, दंतरेगी से आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, वनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। श्रोता दोस्तों, कार्यक्रम में अगला गीत सुनने से पहले ये संदेश।
1: मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: अगले हमारे साथी हैं इस गीत को पसंद करने वाले, वारणा शाहपुरा कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शोरिया, श्रेयस अंकिता और अनिकेत चौहान। अगला संदेश है मुगलपुरा बागपत से, भेजने वाले हैं आप सब अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके परिवार के सदस्यगण, ये हमारे साथी हैं। शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर इंदिराताई, छकुलीताई और टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई से बेगम अनुश्री, प्रदीप राजश्री, प्रमिला प्रदीप, सुरेश जयसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति आप हैं जमानिया गाजीपुर यूपी से, और गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। अगला संदेश हमारे इन साथियों का हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आप हैं गांव दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। कॉलेज गर्ल फिल्म में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज में कॉलेज गर्ल फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। सचिन और बिंदिया गोस्वामी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में रहे और गीत लिखा था शिव कुमार सरोज ने और संगीत से सजाया था बप्पी लहरी ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सब। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ते

बत्ता परिवार के सदस्य मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, ये हमारे साथी हैं। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल, बेबीसिया, आप सब हैं जालना शहर। महाराष्ट्र से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। दोस्तों, कार्यक्रम में अगला संदेश हमारे इन साथियों का। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सदस्यगण, ये हमारे दोस्त हैं। वडिंगखेड़ा, पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। नाभा, जिला पटियाला, पंजाब से आप हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति, गुरमंत कौर, मनु। और ये हमारे साथी हैं सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना, प्रणय और हीरामन शेंडे, आप हैं राहुल नगर, अमरावती, महाराष्ट्र से। कलानौर में जिला और आप लिखें तो एकदम साफ हो जाएगा कि कलानौर कौन से वाला है। खैर, तो आप हमारे प्यारे और पुराने श्रोता हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, ये हमारे साथी हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, आप सब हैं रघुनाथपुरा जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से। और ये हमारे साथी हैं डुमराव, बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम, अदीबा और दानिश अंसारी, ये हमारे दोस्त हैं। जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह, शिवांगी, आप सब हैं गांव हिंगड़ी, आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। और कृष्णा पार्क, दिल्ली से आप हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का। गांव जाखोद, राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा। गांव और डाकघर निमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। बड़ा बम चौक खंडवा, मध्य प्रदेश से संजीता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। और ये हमारे दोस्त हैं एकता कॉलोनी रोहतक से बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। श्रोता दोस्तों, लीजिए अपनी पसंद पर सुनिए दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

भीगी पलकें इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

भीगे पल के फिल्म में अभी आपने ये गीत सुना। शुरू दोस्तों, ये गीत लिखा था शिशिर मिश्रा और कार्तिक राथ ने और संगीत से सजाया था जुगल किशोर और तिलक राज ने। शुरू दोस्तों, कार्यक्रम में ये गीत पसंद करने वाले हमारे साथी रहे फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा विशु लाडली, लाडी खेड़ा विशाल, शालिनी टवांशी और इनके परिवार के अन्य सदस्यगण, ये हमारे साथी हैं। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लक्की, तानिया नारंग, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, धनोरी तेडीवाला से ये हमारे दोस्त हैं। गोविंद पुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार, रिंकी शेखावत, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम ये हमारे साथी हैं। डाबकी रोड अकोला महाराष्ट्र से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और कुमार गौरव, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण, तरुण और प्रतीक ये हमारे साथी हैं। अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से ये हमारे साथी हैं। पद्मा टाकिज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र जी

ये हमारे दोस्त हैं इसी गीत के लिए, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहर जहां, आप सब हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और राधे श्याम पांडे, वीना, विनय, शंकर, नयन, आप सब हैं गांव पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में हाथ की सफाई फिल्म से ये गीत।

जेल रोड जालंधर से आप हैं अमरजीत सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर, धर्मजीत और फातिमा कौर। ये हमारे दोस्त हैं इन्होंने नाम नहीं लिखा है। खैर आप सब हैं, अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमा, डोम सलीम आसमा, यूसुफ और इनके परिवार के अन्य सदस्यगण, ये हमारे साथी हैं। हेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी नगर कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और भाविक सिक्का, ये हमारे दोस्त हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना। अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन दोस्तों का। गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, आप सब हैं गांव लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। और ये संदेश हम शामिल कर रहे हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दकी, नजमा बेगम सिद्दकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिना नूर, ये हमारे साथी हैं। हुरजा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आप हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। और अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, राजकुमार वर्मा और राजकुमार बुडाना, अशोक वर्मा, ये हमारे दोस्त हैं। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। और अगला संदेश हमारे इन दोस्तों का, आप सब हैं करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिन्नू, एकम, दमन और अभिजोत। तो दोस्तों कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

श्रोता दोस्तों, इसी गीत को पसंद करने वाले आप सब लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिनारिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र, बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र और इनके बहुत सारे दोस्त, आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और दिशा। और ये संदेश हमारे इन दोस्तों का, विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा मूनत, बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।

छत्रपति नगर संभाजी नगर महाराष्ट्र से राजेश सावले पाटिल राजदीप राशि राजेश और शीतल राजेश। दोस्तों इसके साथ ही कार्यक्रम चांदनी रातें समाप्त करने की अपने दोस्त नवीन को इजाजत दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रात एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से

0: उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Marke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The Ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. The Ministry said that it was in direct reference to this specific and mischievous narrative that the Defence Minister made the statement in question. Union Minister for Electronics and IT Ashwini Vaishnav and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laid the foundation stone for 2 major electronics manufacturing projects worth 6,750 crore rupees in Jewar, Uttar Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that Jewar is poised to emerge as one of India's leading hubs for electronics and semiconductor manufacturing in the coming years. Explaining the significance of this